मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग. सुबह की हर किरण एक नई उम्मीद लेकर आती है. मुस्कुराइए क्योंकि आज का दिन खूबसूरत हो सकता है सिर्फ आपके मुस्कुराने से. मैं हूँ आपके साथ पूनम राइज एंड शाइन में. 5:07 हो चुके हैं. कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि ठंड हो गई है भाई. बाहर तो बारिश नहीं दिख रही है मुझे बिल्कुल. सड़कें बिल्कुल साफ हैं पर फिर भी ठंड बिल्कुल है. तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने और सुबह की चाय लीजिए या कॉफ़ी. हमारे साथ रहिए रेडियो मस्ती के साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:17 हो चुके हैं दोस्तों, तो हमारी तो मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और आप सब भी अपने अपने घरों में काम शुरू कर चुके होंगे। कई लोग उठ रहे होंगे और कई लोग अभी भी कह रहे हो अरे इतनी ठंड में कैसे उठे, बट उठना तो पड़ेगा, काम पे जाना है। तो पर ऐसे हम आपको उठाने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, बहुत सारे गाने ऐसे चलाते हैं जिससे आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी रिलैक्स जाए। चलिए भाई, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बजते ही चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, और देखना आज है कि कितने लोगों के दिल के करीब है ये वाला गाना जो कि हम अभी चलाने वाले हैं। और आपको हमें व्हाट्सअप करके बताना है कि कौन सा गाना आपके दिल के करीब है 5499-1294 पर, और देखते हैं भाई किस किस के घर का माहौल अभी बदलने वाला है। ये गाना है ही इतना अच्छा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मन्ना डे की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:27 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और इस टाइम हम हैं आपके साथ, यानी कि पूनम और हमारी पूरी MBC की टीम आपके साथ जुड़ी रहती है 24 आवर्स सिर्फ आपको खुश करने के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि मॉर्निंग अगर आपको पानी देख के ठंडा लग रहा हो, अरे कि पानी के अंदर जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तो भाई क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर एनर्जी लेनी है तो पानी के साथ थोड़ी सी तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, वैसे ही जैसे आपने हमारे साथ दोस्ती कर रखी है। व्हाट्सएप के थ्रू टाइम इतने सारे मैसेजेस आए हैं, हमारा दिल खुश हो गया। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस के लिए। तो दो तीन मैसेजेस लेते हैं। कमलदीप जो साथ जुड़ी हुई है हमारे साथ और उसका नेक्स्ट सॉन्ग वो चाहती हैं कि क्रिश के नाम हो और वेदिता आरजे के नाम। तो भाई क्या बात है, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे, वेदिता को भी इंजॉय कीजिए तब तक हमारे साथ। और ये गाना उनके लिए चलेगा। सरोज राजन, मोनिका, पूनम, श्रिया, उमेश, अर्षी कथुबोन से जुड़े हुए हैं और एक प्यारा सा शम्मी कपूर के नाम पर गाना सुनना चाहते हैं और कह रहे हैं आई लव शम्मी कपूर। भाई किसको नहीं पसंद ऐसा शम्मी कपूर, जिनमें इतनी एनर्जी थी, जब डांस करते थे तो सबकी हालत टाइट कर देते थे। और कहते हैं उनकी जो याहू वाला गाना था वो तो आज भी फेमस है, सभी की जिंदगी में वो बहुत ही अच्छा है। और देखिए उनके नाम पे एक तो मेल भी बना था चलिए वो तो मुझे पता है कि उनके नाम पे नहीं था, बट कोई तो हम तो बोल ही देते हैं ना। देवानंद, बबीता एंड धनेशनी, कृष्टि, नकुल, आश्रिया एंड रिया के नाम एक गाना प्यारा सा सुनाना चाहती हैं हमारी एक प्यारी सी दोस्त राजन रघुपत जी, जो कि लंदन से जुड़े हुए हैं साथ में और कह रहे हैं देखो आपने कहा और मैं चला आया। भैया हम कहाँ कहें, हम तो चाहते हैं कि आप 24 आवर्स हम सबके साथ रहिए। चलिए राजन रघुपत जी, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने का। माला सुमारो जी साथ में हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं मॉर्निंग के इस प्रोग्राम को। श्योति जी, ज्योति जी जो कि कहते हैं कि बहुत ही अपने परिवार के साथ हमेशा रहती हैं। आशनी, रेखा, सुरेखा, मधु एंड AMD के नाम एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते 5499124 पर। मॉर्निंग को बनाते हैं सुपर मस्त, एंजॉय कीजिए अपने पुराने गाने।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty. Your daily horoscope. RM2. Radio Musty.
2: नमस्ते दोस्तों, सुबह के 5:45 हो चुके हैं और हर सुबह हमें 24 घंटे मिलते हैं। अब ये कैसे बनाना है ये हमारे हाथ में होता है। चलिए देखते हैं आज आपकी राशि आपको कौन सी सलाह देती है। सबसे पहले शुरू करते हैं
3: एरीज मेष राशि।
2: रफ्तार अच्छी है, बस दिशा सही रखिए। आज जल्दबाजी नहीं, समझदारी काम आएगी। एक छोटा सा फैसला आपको आगे फायदा दे सकता है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 8।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज किसी अपने को समय दीजिए। दो मीठे शब्द रिश्तों में एक नई गर्माहट ला सकते हैं। दिल हल्का रहेगा और दिन भी आसान रहेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 2।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज नया सुनने और नया सीखने का दिन है। हर बातचीत आपके लिए कुछ अच्छा छोड़ सकती है। खुद को खुलकर बताएं कि आप क्या चाहते हैं अपने परिवार को या अपने ऑफिस में। अगर आप सिर्फ इतना कर पाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और जहां पर वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपने खुलकर उनको बताया। तो लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: घर की मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पुरानी चिंता को यहीं छोड़ दीजिए। आज सुकून आपके लिए साथ रहेगा और आपको सुकून पूरे दिन मिलने वाला है। तो बस लकी कलर

0: है व्हाइट, लकी नंबर है 6।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपकी मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींचेगी। जो जिम्मेदारी मिले उसे पूरे दिल से निभाइए, अच्छा असर छोड़ेगा और आपका लकी कलर बनेगा सुनहरा यानी कि गोल्डन, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: हर बात की परवाह करना जरूरी नहीं है और हर किसी को परखना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जैसा चल रहा होता है उसे वैसे ही अपनाइए। आज खुद को थोड़ा सा आराम दीजिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए, अच्छा खाइए और इंजॉय कीजिए अपना पूरा दिन। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 4।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: किसी की खुशी की वजह बनने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में अपनापन बनाए रखिए, दिन यादगार रह सकता है। परिवार आपसे किसी तरीके से, जहां पर आपको बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं कर पाए, आपसे बात होगी, कोई आपको कहेगा कि हाँ भाई आप नहीं थे हमारे बीच में तो हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए लकी कलर बनने वाला आपका पिंक, लकी नंबर है 9।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज चुप रहने से ज़्यादा बोलना काम आएगा। अपने मन की बात सही समय पर कहिए, रास्ता आसान होता जाएगा। लकी कलर बनेगा मेहरून, लकी नंबर है 7।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: नई जगह, नए विचार या नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। दिन को सिर्फ गुजारिए मत, जी भर कर जिए, अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी। लकी कलर बनेगा बैंगनी, लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपका अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन आपको सबसे आगे रख सकता है। जो शुरू करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। शाम तक थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा और आपके दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है। लकी कलर है क्रीम यानी कि बेज, लकी नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज अलग सोच ही आपकी पहचान बनेगी। दूसरों से तुलना मत कीजिए, अपनी राह पर चलते रहिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 11।
1: Pisces, मीन राशि,
0: आज दिल को हल्का रखिए, अच्छी बातें, अच्छे लोग और अच्छी यादों से अपना दिन बनाइए। बहुत पुराने लोग हो सकता है जो आपके इंतजार कर रहे हैं, उनको मैसेज कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें फोन कीजिए। दिन प्यार और सुकून से भरा रहेगा। लकी कलर बनेगा सी ग्रीन, लकी नंबर बनेगा 12। तो ये था आज का राशिफल। इंतजार कीजिए अपने गानों का और उसके बाद हम लेंगे आपके मैसेजेस। इंजॉय कीजिए, ये गाना बहुत ही प्यारा है।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आस्था से आस्था आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. शुक्रवार जिस 10 जुलाई की तारीख है. प्रथम समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली. जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए. ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है. मॉरिशस में अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश में आर्थिक वृद्धि दर 2% रही. पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% रही. कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई है. महंगाई का असर मॉरिशस में लोगों की जेब पर अब भी बना हुआ है. जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पहुंच गया, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई है.

राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, फिर से इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान का कहना है कि पिछले 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हो गई है। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल।

0: कहीं पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty. Musty. Musty. Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:08 हो चुके हैं और मम्मी पापा की सुबह सबसे पहले शुरू हो जाती है। भाई क्या करें, बच्चों का टिफिन देखें, बैग देखें या हस्बैंड की टाई देखें, उनको बोलें कि अरे ये रही आपकी बेल्ट, ये रही आपकी सॉक्स और ये रहा आपका ब्रेकफास्ट। तो मदर जो होती हैं या फादर हो, इनका सुबह सुबह थोड़ी सी क्लास, इनकी सुबह विदाउट टीचर लग जाती है। तो पर क्या करें, हम तो आपके साथ हैं, आपके गानों के साथ आपको इंजॉय करा रहे हैं, बट आप साथ साथ अपने जो भी काम करें वो हंसते मुस्कुराते हुए करते रहे, ये भी एक लाइफ है ना। चलिए जी, मदर फादर को ये भी बड़ा दिल होता है कि अगर बच्चों का बर्थडे हो तो उनको विश सबसे पहले वो ही करें। तो इस समय रेशमा जी साथ हैं जो कि संध्या जी को विश कर रही हैं। संध्या जी को कि उनका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी वो लिखना भूल गई, बट हम आपको यही कहते हैं चाहे आपने उनको बर्थडे के लिए विश किया हो या एनिवर्सरी के लिए, हमेशा वो खुश रहें और हमेशा अपना ख्याल रखें। प्रिस्ला वेरा सामे जो कि गुडलैंड से हैं, उनका भी आज बर्थडे है। आयश, तुलसी, प्रिया, आशना, सीला, रेखा, सेलिना, अनिशा एंड अरुणा उनको विश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं बहुत बहुत आपको बधाई आज के दिन के लिए। साथ में ही आज बर्थडे है नीमा जी साथ जुड़ी हुई हैं और उनके बेटे वीरेश का बर्थडे है और वो आज 3 साल के हो गए हैं। पापा विशाल और 2 ब्रदर्स यानी कि यादव एंड नीलेश उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो कितना क्यूट है, हमारे साथ ऐसे ही रहे, बड़े होकर हम लोग छोटी छोटी सी फाइट्स करेंगे और तुझे स्ट्रांग बनाएंगे। क्या बात है भाई, भाइयों का तो होता ही है, वो अपने भाइयों का या छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो हम आपको विश करते हैं सभी को जिनका भी बर्थडे है और आप सबको जिन्होंने हमें मैसेज भेजा और कहा कि आज उनका बर्थडे है, ज़रूर विश कीजिएगा। हमेशा खुश रहें, प्यार बांटते रहें और प्यार लेते रहेंगे। है गाना आप सबके लिए, एंजॉय कीजिए।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती
1: 6:27 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो चलिए भाई हम थोड़ी देख दो मैसेजेस ले लेते हैं और हम आपको सिर्फ इतना सा कहेंगे जो भी लोग इस टाइम जिम के लिए निकल चुके हैं या जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं या जो वो दोस्त हमारे जो कि दिल से तो जवान हैं बट थोड़े से शरीर में इश्यूज़ आ गए हैं तो हम आपको कहेंगे कि बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको 15 से 20 मिनट थोड़ी सी धूप में बैठना है, थोड़े से अपने बॉडी पे या अपने घुटनों पे अपने पैरों पे थोड़ी सी धूप जरूर लेनी है। नेचुरल जो मॉर्निंग की धूप होती है ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपके लिए भी फायदेमंद होगी। उसके बाद आप अपना बाथ ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और पूरे दिन में बहुत थोड़ा सा लाइट फूड खाइएगा और हेल्दी खाइएगा, बस इंजॉय कीजिएगा। 6:28 हो चुके हैं, ये एक प्यारा सा गाना छोटा सा, उसके बाद आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार। इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना।

की ठीक 6:30 बज रहे हैं समाचार सुनिए शुक्रवार 10 जुलाई का दिन है ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ इस वर्ष की पहली तिमाही में मॉरिशस में पर्यटकों का आगमन बढ़ा हालांकि जून महीने में पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है लेकिन अर्थव्यवस्था में विस्तार का सिलसिला जारी जून महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है राष्ट्रसभा की कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे से फिर से शुरू होगी डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी पोंजुसाक के चर्चित दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा कि डीपीपी को बरी किए गए आरोपी के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला जारी है जबकि हुर्मुज समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही में तेज गिरावट दर्ज की गई है इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली है जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है यानी इस साल 9,562 अधिक पर्यटक मॉरिशस पहुंचे हालांकि सिर्फ जून में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4% कम रही ये आंकड़े

0: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने कल जारी किए। इन आंकड़ों पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री शौजीवाल ने कहा कि जून का महीना दुनिया के कई पर्यटन स्थलों के लिए कठिन रहा है। पर्यटन मंत्री शौजीवाल को सुनती है विवरण रश्मिकर।
1: Et aussi le fait que toute bonne destination touristique encore peut subir les conséquences de la guerre qui finit énorme au Moyen-Orient.
2: मंत्री ऋषभ जिवाल ने कहा सभी पर्यटन गंतव्यों को अभी भी मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। ये भी समझना चाहिए कि बहुत से लोग दो तीन महीने पहले से ही अपनी यात्रा की तैयारी कर लेते हैं, अतः लड़ाई के बीचों बीच संभवतः लोगों ने अपनी बुकिंग नहीं की, इसीलिए कहीं न कहीं लोगों में यात्रा पर जाने का डर बना हुआ है। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि जून महीने में विश्व कप की शुरुआत हुई तो ये भी स्थिति के साथ जुड़ जाता है, चाहे इसका मूल्यांकन करने के लिए अच्छे विश्लेषण की जरूरत होगी।
0: मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। अभ्युदय,
3: जीडीपी का मतलब है किसी देश में बनी चीजों और सेवाओं से पैदा हुई कुल संपत्ति। साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच मॉरिशस की जीडीपी लगभग 180.7 बिलियन रुपए रहने का अनुमान है, जो 2025 की पहली तिमाही 169.2 बिलियन रुपए की थी। परंतु अगर असली विकास यानी कि रियल ग्रोथ रेट की बात करें तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है। ये 2% की दर से बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 3.4% की दर से बढ़ी थी। कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संभाल रही है ये जानना जरूरी है। इस विकास को मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से सहारा प्राप्त हुआ। पहला है वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट और व्यापार, और साथ ही साथ कृषि तथा आईटी। किन क्षेत्रों में गिरावट आई है ये भी जानना जरूरी है। कुछ क्षेत्रों ने आर्थिक प्रदर्शन को नीचे खींचने का काम किया है, जैसे कि निर्माण सेक्टर, इसमें 4.3% की गिरावट आई है। टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग, इसमें 14.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसमी परिवर्तन को हटाकर देखें तो पिछले तिमाही की तुलना में आर्थिक गतिविधियों में 0.2% की मामूली गिरावट आई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, परंतु इसकी रफ्तार पहले से ही धीमी हो गई है और यह केवल कुछ प्रमुख सेक्टरों पर ही निर्भर है।
0: हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पर पहुंच गया है, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि नोट की गई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन रोजमर्रा के खर्च का बोझ अब भी लोगों पर बना हुआ है। अभ्युदय,
3: जून 2026 में साल दर साल महंगाई दर घटकर 3.7% हो गई है, जो पिछले साल की इसी समय में 5.4% थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों के दाम कम हो रही है, कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, परंतु जून 2025 की तुलना में थोड़ी धीमी गति से। दूसरा ध्यान देने योग्य आंकड़ा यानी कि स्टैटिस्टिक्स पिछले 12 महीनों की औसत महंगाई दर का है, जो 4.1% तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल की तुलना में यही 2.9% की रही। अर्थशास्त्री एरिक निंग के अनुसार इस लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, मई से बिजली के बिल में 15% की बढ़ोतरी, कुछ सेवाओं के खर्च में इजाफा। उनका यह भी मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं तो साल के अंत तक औसत महंगाई दर 5.7% तक पहुंच सकती है।

0: एक और चिंता की बात यह है कि को इन्फ्लेशन यानी कि बुनियादी महंगाई अभी भी 6.5% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। इसी से यह भी पता चलता है कि महंगाई अब सिर्फ ईंधन या फिर खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी फैल गई है। इसका आम जनता और व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा यह भी जानना जरूरी है। रोजमर्रा के खर्च बढ़ेंगे और उनकी जेब यानी कि उनकी खरीद क्षमता पर बोझ बढ़ेगा। जहां तक कंपनियों या फिर व्यवसाय की बात है तो वहां पर उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वे भी अपनी चीजों के दाम फिर से बढ़ा सकते हैं।
1: राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे शुरू हुई। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि 2018 में फोंजीसाक में पिता और बेटे की हत्या के चर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ये तय करना होगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद ही मामले की आगे सुनवाई होगी। 8 जुलाई को चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और 2 अन्य जजों ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। बचाव पक्ष का कहना है कि संविधान के तहत डीपीपी हर बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। वहीं डीपीपी का कहना है कि संविधान उसे आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार देता है। उमेश कुमार बाबूलाल को इस मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि उनके भाई रितेश कुमार बाबूलाल को बिना इरादे के हत्या के 2 मामलों में 38 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। स्थानीय स्तर की खबरों में ही मंगलवार को मौशमालू निकलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। एक ऐसी त्रासदी जो दम घुटने की स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती है और अधिकारी लोग ये आगाह करते हैं कि मौशमालू गमी कैंडी लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची अंगूर लोंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। याशना मिश्रा।
2: मार्शमेलो कैंडी लॉलीपॉप चॉकलेट मूंगफली और साथ ही कुछ फल जैसे लीची और लोंगान, ये सभी चीजें बच्चों की पसंदीदा होती हैं, लेकिन यदि इन्हें उनकी उम्र के अनुसार न दिया जाए या बिना निगरानी के खाने दिया जाए तो ये गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
3: Pour les petits enfants de en dessous de 2 ans, quand nous commençons cette alimentation, nous devons faire bien attention. Il y a des noix, c'est-à-dire pistache, amandes, etc. Il ne faut jamais donner aux enfants en entier. Sinon, un peu de noix, nous devons écraser, nous devons moulu en forme de poudre, nous garder dans notre alimentation.
2: 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नट्स देना हो तो उसे कुचलकर पाउडर के रूप में दें। अंगूर आसानी से गले में अटक सकते हैं, मार्शमेलो आदि आसानी से गले में चिपक सकते हैं।
3: Par exemple, nous gagnons la gomme guimauve, ce qui n'arrivait malheureusement, il y a un aliment qui est facile, il est assez gros, il va coller dans la gorge, il va descendre facilement.
2: दम घुटने के शुरुआती लक्षणों को तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है।
3: Si un enfant commence à étouffer n'importe quel âge, il est capable de tousser.
2: जब बच्चे का दम घुटता है तो उसे खांसी होती है, उसे खांसने देना चाहिए। यदि वो बेहोश होने लगे, रंग बदलने लगे तो तेजी से कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुरुआती सेकंड्स में क्या किया जाए?
3: Bon, ce sont des mouvements brusques et rapides qu'il faut faire. Okay? Et si là aussi l'enfant n'arrive pas à expulser ce qui fait cause le blocage, on retourne la tête ici, on tourne là la tête vers le bas, okay? Et là pareil, nous, là. La tête vers le bas, il nous donne un coup assez rapide sur le dos ici, okay? 5 fois. D'accord? Jusqu'à ce que l'enfant ait réussi à expulser ce qui fait bloquer. Et bien sûr, si l'enfant perd connaissance à ce moment-là, là nous commençons à une mesure de CPR avec l'enfant. Et on appelle les secours toujours en attendant. Donc c'est 1, 2 et on remonte. C'est plus fort à l'intérieur et en forme de J. Ok, c'est un mouvement. Et si là aussi l'enfant n'a pas un récif, elle est au bout de 5 ans, il n'est pas un tiers. Donc on fait l'enfant vers l'avant. On met une armée anti-homoplate, ok, en se discapula. Et là, nous tape 5 fois rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, disposé, crash-les.

0: भोजन के दौरान बच्चों पर लगातार नजर रखना, उन्हें सही तरीके से बिठाकर खिलाना, उनकी उम्र के अनुसार खाना पीना देना दम घुटने के खतरों को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि जब किसी बच्चे का दम घुट रहा हो तो हर एक सेकंड बेहद कीमती होता है और सही समय पर उठाया गया सही कदम जान बचा सकता है।
1: और अब चलिए जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, पर अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा हल्की बहेगी, पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 19 से 22 अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर। तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनी। शास्त्री रोड पुआपियोली में 65 साल की 65 years old की इंद्रावती बिहारी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चतुरी, लोग उन्हें रानी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे पूरब कुमार सिंह बिहारी के मकान पुआपियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM पालमा काट्रोबोन में 65 साल की 65 years old की मानती रामदे सिंह की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम निया, लोग उन्हें गीता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM मुसलमान गफरी लोशे तेरूश में 79 years old के श्री अचाना अपाना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाला अपाना के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी सिनेमा येदलुब अपाना के मकान तेरूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वालिदे पद के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड क्रेव क्यूमे 66 साल की 66 years old की मेधा धनु की मृत्यु हो गई है। पैदाइश राम बर्टन, लोग उन्हें मेधा के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन में एक्टिंग डेप्यूटी का पद संभाल चुकी है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति सम्राज सिंह धनु के मकान खेव की ओर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल के 67 years old के विनोद माथुर की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी अंजनी माथुर के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून रॉयल रोड 7000 ट्रियोली में 66 साल के 66 years old की आवे दानांदन सोमी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बाबू के नाम से ज्यादा जानते थे और वे पहले कोगो हैंडलिंग में काम किया करते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSO लेन क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM सनफ्लावर स्ट्रीट मापू में 82 years old के 82 साल के सुंदरा दत्त मुहेश की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूर्या के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे विशाल मोहिस के मकान सनफ्लावर स्ट्रीट मापू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊदी पेची गफरी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रेलवे रोड सैमिशेल बेलिया रिविया सेश में

67 साल की 67 years old की सूर्या नारायण रामदू की मृत्यु हो गई है। सूर्या नारायण रामदू की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 उन्हीं के मकान बिलेरी वैसर्ष से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM SSR स्ट्रीट पिटोमी 47 years old की 47 साल की 47 years old की विकास चुलन की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें मुन्ना के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज इनके 11:00 उनकी माता स्वस्ति चुलन के मकान पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM कैट्रो बोन में एवेन्यू बेटो कॉम्पासी कैट्रो बोन में 44 साल की 44 years old की नारायण दत्त कुमार धनुक सिंह धनुकचंद की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें चंदन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11:00 उन्हीं के मकान कैट्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदूगौर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM काली माता रोड लालमाती में 66 साल के इंद्रदेव पुनाई की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें ईश्वर के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11:00 उनकी पत्नी विदुला पुनाई के मकान लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM पॉइंट पी मॉमी 52 years old की उमा भूला की मृत्यु हो गई है, पैदाइश रामझरी। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 उन्हीं के मकान पोथपीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM राहुल रिवेट स्ट्रीट मोरोश बोबासेमें 79 years old की वेदावदी नारायणन की मृत्यु हो गई है, वेदावदी नारायणन की मृत्यु हो गई है, पैदाइश नाम कादियावालू, लोग उन्हें पुष्पा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 उन्हीं के मकान मोहोश बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM नंबर 78 C राहुल रिवेट स्ट्रीट पोर्टलिमी 75 साल के 75 years old की गोविंदन चनुसामी की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें सदा के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 12:00 उन्हीं के मकान पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रोंगबो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून खुतो बोशेरी पेटी वेजे सैं पियामी 71 साल की 71 years old की कमलावती लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, पैदाइश नाम मोहादुआ, लोग उन्हें शोभा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 उनके पति ईश्वर दत्त लक्ष्मण के मकान सैं पिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैं पिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM इंग्लैंड में 76 years old के 76 साल के अनिरुद्ध कुमार चमरू की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी इंग्लैंड में ही आज दिन के 1:30 उठाई जाएगी। 10 Avenue Wilson बेलरोज में 92 साल की 92 years old की सरोजिनी तिलक की मृत्यु हो गई है, पैदाइश नाम गोपाल, लोग उन्हें जेनी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 उनके बेटे देवानंद तिलक के मकान बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रियानों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM रॉयल रोड वाली दे प्रेत में 68 साल के 68 years old के मुखराम हुकुम की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 10:00 उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दे प्रेत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM पायोंके रोड मोसलमान सेंट एंटोन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 years old की जगवंती राजकुमार की मृत्यु हो गई है, पैदाइश राम जुदवा, लोग उन्हें इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 11:00 उनके बेटे विमल राजकुमार के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

आजकल फुटबॉल की वजह से आप सबका टाइम टेबल थोड़ा सा बदल गया है, पर मैच भी देखिए, एंजॉय कीजिए गानों को भी साथ साथ। और मैं थी आपके साथ सुबह 5 बजे से राइज एंड शाइन में, अब आपको साथ मिलेगा नीतू शाह का मॉर्निंग बीट में। एंजॉय कीजिएगा आरएम2 रेडियो मस्ती, आपका दिन शुभ रहे।

ये तो हम सबको चाहिए, शांति शांति एंड शांति. 7:07 हो रही है. विशिंग यू ऑल अ लवली मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. जी हाँ, हर सुबह जो होती है लाइफ के एक नए पन्ने की तरह होती है. बस कल जो बीत गया अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एंड ऑफ कोर्स विद पॉजिटिविटी उसको एक मौका दीजिए. तो लेट मी विश यू ऑल वंस अगेन अ लवली मॉर्निंग. प्यार भरा नमस्कार, नीतू आपके साथ अप टिल 9 AM. 2 घंटों के सुरीले सफर में आपका स्वागत है. एंड स्पेशली आज तो फ्राइडे है, बस आपकी मॉर्निंग एकदम गुड गुड हो यही कामना करते हैं.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: That's the new Bollywood भाई पहले के गानों को लेकर आज remix style में हर तरह के style में आपको सुनाई जा रही है. सर्वश का 10 मिनट था वर्षिकों को. Yes, you just have to play with MBC और आपको जीत यानी कि आप जीत सकते हैं. What? You stand a chance to win one ticket to the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday, yani ki 25 July 2026 ko, wo bhi raat ke 7:30 baje at SBI CC Pi. So more details hum aapko denge bas thori der baad. Ek sawal ho jaye, ek paheli hai, isko aap bujhaiye aur kya pata aap lucky winner ban sakte hain. So 5499129 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ऑलरेडी अगर आपकी जीत हो चुकी है, हमेशा कहते हैं बाकी सबको मौका दीजिए, दोस्तों को मौका दीजिए. सो टेल मी, सवाल क्या है नीतू? यस, द मोर यू रिमूव फ्रॉम मी द बिगर आई बिकम. व्हाट एम आई? हां, ये क्या है? द मोर यू रिमूव फ्रॉम मी द बिगर आई बिकम. व्हाट एम आई? क्या है सही जवाब? सैकत नफ नफ दूज नफ कट. आप सही जवाब, पूरा नाम, पता भेज दीजिए.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: साबिश को 17 मिनट कभी-कभी मुर-मुर के वापस देखना भी अच्छा होता है। गर्दन के लिए शायद नहीं, लेकिन दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑलराइट, आपसे पूछा था एक सवाल, एक पहेली। The more you remove from me, the bigger I become. What am I? इतने सारे सही-सही जवाब मिले हैं, कई जो सरप्राइजिंग जवाब भी मिले हैं, लेकिन आपने पार्टिसिपेट किया, ये सबसे जरूरी बात है। तो सही जवाब है होल। जी हाँ, होल। द मोर यू रिमूव फ्रॉम मी द बिगर आई बिकम। मैं हूं एक होल। और यहां पर सही जवाब देने वाले, काश सबको हम ये टिकट दे पाते, लेकिन लकी विनर हमारे लकी के बाद, लकी ड्रॉ के बाद है मिस्टर धीलेश झानी, और आप रहते हैं पीतोसो। ब्रावो, कंग्रेचुलेशन, आपकी जीत हुई। एंड योर विनिंग, यानी कि आपकी जीत हो हुई है और आपको मिल सकता है, आपको मिल रहा है, बाय द वे, एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: देखते ही देखते 10 जुलाई भी हो चुका. Oh my God, already 7th month. और ये वक्त इतना जल्दी बीत जाता है ना. कभी कभी हम लोग कहते हैं वक्त नहीं मिला ये करने का वो करने का. भाई देखो, हमेशा कहती हूँ वक्त जो है ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वो तो रुकता नहीं किसी के लिए, आगे बढ़ता चला जा रहा है. That's why समय जो होता है, वक्त जो होता है, जिंदगी का वो अनमोल खजाना होता है जो वंस गुजर जाए ना तो वापस आता नहीं है. That's why समय की कदर हमको करनी चाहिए, अपनी लाइफ की कदर करनी चाहिए. और जो इंसान अपने समय को सही तरीके से संभालना सीख लेता है वो अपने लक्ष्य, अपने जो गोल्स हैं उसके

करीब पहुंचने लगता है एंड टाइम मैनेजमेंट हमें अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा करना या फिर स्ट्रेस को कम करना और लाइफ में संतुलन जो मेंटेन हम लोग करते हैं ना बैलेंस वो बनाए रखने में काफ़ी मदद भी करता है। सो जब हम अपने दिन की प्लानिंग करते हैं ज़रूरी कामों को पहले रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुश रह सकते हैं। तो बस समय की आप सही प्लानिंग कीजिएगा। जो काम करना होता है सुबह उठकर नहीं, रात को सोने से पहले आप अपने कपड़े को स्ट्री कर दो। बच्चे लोग रिवीजन करते हैं, अपने बैग को एकदम से सेट कर लेते हैं, अपने सामान अपनी चीज़ों के लिए। बेटा आप काम पर भी जा रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट, 7:32 हुए हैं. हमारे साथ है कोई, हमसे बात करना चाहती हैं. हेलो हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर.
3: गुड मॉर्निंग,
2: आप कैसे हैं?
3: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. अभी आप घर

0: पर है, कहां पर है, क्या कर रही है?
1: घर पर हूँ।
0: घर पर है, ऑल राइट। तो मैंने सुना है कि आप फुटबॉल देख रहे हैं ज्यादा।
1: हाँ, क्या करेंगे।
0: आपकी फेवरेट टीम कौन सी है?
1: अभी जो स्पेन है।
0: स्पेन है, उसकी जीत होगी या नहीं?
1: बिल्कुल होगी।
0: होगी, ओके, यू आर सो कॉन्फिडेंट। सो टेल मी, अगर आपकी जीत होती है, आपको मौका मिलता है, लाइक लेट्स से फाइनल में स्पेन की जीत हो जाती है, या फिर फाइनल में मौका मिलता है जाने के लिए, तो आप जाएंगे? हम आपको ये टिकट देने वाले हैं।
1: हाँ, जाएंगे।
0: जाएंगे जरूर। किसके साथ जाएंगे?
1: अकेले जाऊंगा।
0: अकेले जाएंगे? हे भगवान, आप अकेले अकेले फुटबॉल देखने जाएंगे, घर पर किसी को लेकर नहीं जाएंगे?
1: नहीं, वो लोग फुटबॉल इतना पसंद नहीं करते हैं।
0: इतना पसंद नहीं करते हैं, तो चलिए हम आपको ये टिकट देते हैं, आप लेने आ सकते हैं।
1: हाँ।
0: आपको कहाँ आना है?
1: कहाँ पर बोलो।
0: टिकट लेने आना है, लेकिन आपको कहाँ आना है ये तो आपको पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप ये वाला टिकट सुन लीजिएगा, फिर आपको बताएंगे।

0: हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर अविनाश. वैसे आपसे क्योंकि मुझे अंदाजा लग गया कि आपको पता चल गया कौन आपसे बात कर रही है और आप कहाँ हो. सो आप योर वेल ट्यून टू रेडियो मस्टी और आज आपका बर्थडे है ना. सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और ये आपकी बहन पूजा की तरफ से, आपकी माँ राजवानी की तरफ से हमको एक मैसेज मिला कि प्लीज मेरे भैया को फोन कर दो नीतू और उसको विश कर दो. तो आज आपका दिन है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं?
1: आज बहुत खुश हूँ.
0: काम पर जाने वाले हैं अभी क्या?
1: तैयारी हो रहा है.
0: तैयारी हो रही है तो चलिए आप अपनी तैयारी कीजिएगा एंड हैव अ नाइस डे अहेड आपके पूरे परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. ठीक है, ओके बाय बाय. तो आपको लोलो की तरफ से ये जो बर्थडे गिफ्ट है आपको मिल रहा है एक वाउचर. सो वी आर डिलाइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे विद लव एंड लॉफ्टर विद लोलो हाइपर. थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू. टेक केयर, बाय बाय.
1: Bye-bye.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 743 ऑलरेडी भाई फुलारी बिना चटनी फिर भी बन जाएगी बट बिना अच्छे खेले जीत हो नहीं सकती है दैट्स फॉर श्योर है ना और फ्रांस टीम सबको मात दे जा रही है क्या बात है कल एक बार फिर जीत हो गई है वक्त ही बताएगा कि क्या इस बार भी फ्रांस की जीत होगी या नहीं बट मोर अपडेट्स अभी के लिए आपके साथ अरविंद विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग
4: आपको गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड किलियान एम्बापे के सामने मोरोको को बाप रे बाप कहना पड़ा फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोरोको वर्ल्ड कप जीतने जैसा मेसी करता है वैसा ही एम्बापे करता है फर्स्ट हाफ में एम्बापे पेनाल्टी पर स्कोर नहीं कर पाया इजिप्ट के खिलाफ मेसी की भी यही कहानी थी पर सेकंड हाफ में एम्बापे का एक गोल कुछ ही मिनट बाद एम्बापे के पास पर डेम्बेले का गोल 2-0 की आसान जीत मोरक्को को टाटा बाय बाय क्वार्टर फाइनल तक आए बहुत नए फैंस बने पर सबकी उम्मीदों को खलास किया फ्रांस ने पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी मोरक्को की हार 2-0 से उस बार सेमीफाइनल में इस बार क्वार्टर फाइनल में लियोनेल मेसी की तरह किलियान एम्बापे के पास 8 गोल है गोल्डन बूट रेस अंत तक होगा शायद फाइनल तक क्योंकि अगर फ्रांस और अर्जेंटीना मिलेंगे तो ये फाइनल में ही हो सकता है इससे पहले नहीं सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन या बेल्जियम से होगा मॉरिशस में भी वर्ल्ड कप का जादू छा गया है घर बैठे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर एमबीसी प्ले ऐप पर फ्रांस की जीत का जश्न मनाया गया कई जगहों में बड़े पर्दे जैंट स्क्रीन पर मोरक्को की हार का शोक मनाया गया फ्रांस के फैंस भी आए हुए थे जश्न मनाने फ्रांस की जीत आज का मैच 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम लॉस एंजेलिस के सोफी स्टेडियम में यूरोप के दो चैलेंजर आमने सामने यूरोपियन चैंपियन है स्पेन पिछले 35 मैचों में अपराजित 35 मैच अनबीटन स्ट्रीक रेगुलेशन टाइम में लाहोगा एक मिसाल है मॉडल ऑफ डिफेंसिव डिसिप्लिन अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है केप वर्दे के खिलाफ 0-0 ड्रॉ के बाद सऊदी अरेबिया को 4-0 से पछाड़ा यूरुग्वे को 1-0 से ऑस्ट्रिया को 3-0 से और 1-0 से पोर्टुगल पर जीत लुइस डेला फुएंटे की टीम का स्क्वाड बैलेंस्ड और सेटल्ड है लामिन यमाल मिकेल ओयोजाबाल कुकुरेला पेड्री रोड्री ओल्मो डराने वाले नाम है उधर बेल्जियम के रेड डेविल्स 18 मैचों में अनबीटन अपराजित ग्रुप स्टेज में धीमी शुरुआत रही थी पर राउंड ऑफ 16 में यूएसए को 4-1 से सुधारा गोलकीपर कूटवा फिर चिलेमैंस डोकू डेब्रुइन थोसा लुकाकू जैसे अनुभवी स्टार खिलाड़ी हैं इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों में हर बार स्पेन की जीत हुई है इसीलिए आज भी स्पेन को हराना पेनफुल होगा ओप्टा सुपर कंप्यूटर ने स्पेन को फेवरेट बनाया है 59.3% रेगुलेशन टाइम में जीत और 69.5% ओवरऑल चांस बेल्जियम केवल 18.3% फुटबॉल पंडितों का मानना है कि ये एक लो स्कोरिंग टाइट टैक्टिकल मैच होगा स्पेन वर्सेस बेल्जियम जो जीतेगा सेमीफाइनल में फ्रांस से लोहा लेगा इस वीकेंड में फुटबॉल ही फुटबॉल आज रात स्पेन वर्सेस बेल्जियम लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर और एमबीसी प्ले ऐप पर भी फिर संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड ये मैच भी आप देख पाएंगे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर और सोमवार सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड पहला सेमीफाइनल लाइव एमबीसी टीवी पर मंगलवार 11 बजे दूसरा सेमीफाइनल बुधवार 11 बजे थर्ड प्लेस मैच शनिवार सैटरडे सुबह 1 बजे और द बिग वन महाफाइनल संडे 19 जुलाई को 11 बजे क्वार्टर फाइनल के 3 मैच सेमीफाइनल के दोनों मैच थर्ड प्लेस मैच और फाइनल सब लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले

0: पर आप लोग देख पाएंगे। नॉर्वे के खिलाफ मैच में इंग्लैंड का डिफेंडर माग्वे शायद नहीं खेल पाएगा, हैमस्ट्रिंग इंजुरी है, आज फिटनेस टेस्ट होगा। राइट बैक रिकी जेम्स वापस आ गया है, डेक्लेन राइस बीमार है, ट्रेनिंग नहीं कर पाया। अर्लिंग आलोन नाम का टोर्नाडो आ रहा है, टोमास टुगेल को अपने डिफेंस को मजबूत बनाना होगा। लिवरपूल के पूर्व मैनेजर यर्गन क्लॉप ने कहा कि लिवरपूल किलियान एम्बापे को साइन करने के बहुत करीब था, इसे मोस्ट एक्सपेंसिव नॉन ट्रांसफर कहा। एक प्राइवेट जेट भेजा गया था, खाना पीना साथ में, एम्बापे के पूरे फैमिली को हवा में दावत दी गई थी, खूब खिलाया पिलाया, बहुत कोशिश की, पर एम्बापे बाद में पेरिस सेंट-जर्मेन चला गया, उतना खर्च बेकार में गया, ऐसा यर्गन क्लॉप ने कहा। टेनिस, विंबलडन ओपन में कोको गोफ की हार हुई मुचोवा के खिलाफ 6-2 1-6 7-6 से। फाइनल में मुचोवा का सामना नुस्कोवा से होगा, नुस्कोवा ने कोस्टुक को हराया 6-4 6-4 से। आज लड़कों की बारी, सेमीफाइनल फेरी वर्सेस विरेव और सीना वर्सेस जोकोविच। क्रिकेट, टीम इंडिया की हार, एक बार फिर से हार, लगातार पांचवी हार। इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में 9 विकेट से जीत हासिल की, इस तरह 3-0 से इंग्लैंड सीरीज जीत पाया, एक मैच खेलना बाकी है। वैभव सूर्यवंशी केवल 15 पर आउट हुआ, 10 गेंदों में एक चौका एक छक्का। श्रेयस अय्यर 80 नॉट आउट, 80 नॉट आउट। इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट 59 नॉट आउट, हैंस ब्रूक 79 नॉट आउट, भारतीय टीम की फिर से हार। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 2-0 से मोरक्को को रोका, मोरक्को को टोका, इस तरह लिब्लू आगे बढ़ते जा रहे हैं। भूलिएगा नहीं, आज रात इट्स स्पेन वर्सेस बेल्जियम दूसरा टिकट सेमीफाइनल के लिए, और हम मिलेंगे 8:30 विद द स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन RM2 एंड हैव अ नाइस वीकेंड अहेड।
1: थैंक यू सो मच अरविंद। वेल, जीतेगा भाई जीतेगा, जो अच्छे से खेलेगा वही तो जीतेगा।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal. Low tiles 60x60. Super sales low granite quartz. Prix cassé low lavoir. La lumière moderne. Prix choc.

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
2: रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 8 बजे हैं आप सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार।
8: नमस्ते, सुनो भोजपुरी में समाचार। ये बरिस मॉरिशस में पर्यटक लोग की संख्या थोड़ा बदलल बा। बकीर जून महीना में पर्यटक कम आयल, जनवरी से जून 2026 ले 668,471 पर्यटक मॉरिशस आयल। ई पिछल का बरिस के यही समय से 1.5% जस्ती बा, मतलब 9,562 जस्ती पर्यटक आयल। हालांकि खाली जून महीना में पर्यटक की संख्या 8.4% घटल बा। ई आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस जारी कर ले बा। ई पर पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल बोलन कि जून महीना दुनिया के कई पर्यटन जगह खातिर मुश्किल रहल। मॉरिशस के अर्थव्यवस्था आगे बढ़त बा, बकेर रफ्तार आगे से धीमा पड़ गल बा। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ा के मुताबिक 2026 के पहला तिमाही में आर्थिक बढ़ोतरी 2% रहल। पिछल का बरिस से यही समय ई 3.4% रहल। कुछ सेक्टर में बढ़िया काम हुआ था, बकीर निर्माण और कपड़ा उद्योग में गिरावट देखल गल। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ा के मुताबिक जून महीना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़ के 112.2 पर पहुंच गल, मतलब 0.3% के बढ़ोतरी भइल। हालांकि बरिस भर के हिसाब से महंगाई के रफ्तार कुछ कमती भइल बा, बकीर रोज के खर्चा अभियो लोगन पर भारी पड़त बा। राज्यसभा के बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू हुई। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर ही आगे बहस आगे बढ़ावल जाए। 2018 में फौजीसाक में बाप बेटा की हत्या वाला मामला अभियो अदालत में बा। सुप्रीम कोर्ट पहले ई तय करी कि डीपीपी उमेश कुमार बाबूलाल की बरी होखे के खिलाफ अपील कर सकेला के नहीं। 8 जुलाई के चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और दूगो जज दोनों पक्ष के दलील सुनलन जा। बचाव पक्ष के कहना बा कि डीपीपी के ई अधिकार नहीं बा, जबकि डीपीपी के कहना बा कि संविधान ओकरा के ई अधिकार देला। उमेश कुमार बाबूलाल बरी हो गल रहल, जबकि उनकर भाई रितेश कुमार बाबूलाल के 38 बरिस के जेल के सजा मिलल। दूसर देश के खबर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गल बा। अमेरिका के दावा बा कि ऊ लगभग 90 सैन्य ठिकाना पर ही हमला कर ले बा। उधर ईरान के कहना बा कि पिछल का 2 दिन

0: में 14 लोग के जान गलबा जवाब में ईरान कुवैत बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकाना पर हमला करे के दावा कर लेबा तो ये रहा हमने के भोजपुरी में समाचार हमने के सुन ला जा धन्यवाद
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: आज तो द मुर्गेज एंड मुर्गियां सब बड़ी खुश क्योंकि फ्रांस की जीत जो हो गई है। भाई जीत हार तो होती रहती है, लेकिन मौसम का क्या मिजाज है आज?
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर जारी रहेगा। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को देश भर में मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:44 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Hey, thank you so much once again. लेकिन logic है हाँ, इतनी सर्दी में इतनी ठंड में रात को कौन खेत में जाता है भाई? हम तो ना जाएं, आप ही ना जाओ. Stay well tuned to Radio Musti. 8:16 चलिए आपको ले चलते हैं बी टाउन एंड बातें हो रही है अभी भी about the movie Alpha already released on the 3rd of July and यशराज movies films की ये जो movie है Alpha जिसमें आलिया और शर्वरी नजर आए हैं. Well, largely mixed to negative reviews मिल रहे हैं इस movie के बारे में. आपने देखी by the way movie? अच्छी लगी आपको? देखो किसी को पसंद आती है किसी को नहीं, लेकिन critics इस movie को dull कह रही है. And despite commendable ambition and slick action, यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं about action तो male dominant industry जो होती है Bollywood इसके बारे में भी आज बातें हो रही हैं. And आलिया और शर्वरी कहा जाता है कि अपने कैरेक्टर्स के जो जबरदस्त एक्शंस उन्हें दिए हैं frequently overshadowed by their male counterparts like Bobby Deol, जी हाँ अनिल कपूर as the mentor. अब ऋतिक रोशन भी इसमें cameo role में नजर आए हैं लेकिन फिर भी उनको overshadow कर गए हैं. ये गलत बात है. I don't know, गलत सही बात है, सही शब्द है या फिर नहीं, लेकिन movies काफी लोगों को पसंद नहीं आ रही है. And for a deeper visual breakdown, Alpha जो है it struggles to balance espionage with its emotional narrative. बस हम आपको कहेंगे अगर आपको मूवी अच्छी लगी, आप आलिया के फैन हैं तो जाकर मूवी देखिए, उनको जरूर कैसे कहते हैं सराहा दीजिएगा.

0: prête au défi de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: जीवन की असली सफलता सिर्फ लंबी उम्र जीने में नहीं। जी हाँ, जीवन की असली सफलता सिर्फ लंबी उम्र जीने में नहीं, बल्कि हर पल को अर्थपूर्ण बनाने में है। ऐसे काम कीजिए जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, ऐसे शब्द बोलिए जो किसी का हौसला बढ़ाए, और ऐसे विचार रखिए जो आपकी आत्मा को ही शांति दे। जब लाइफ का हर दिन प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा से भर जाता है, तब जिंदगी सिर्फ जीना नहीं जाता, बल्कि एक सुंदर प्रेरणा भी बन जाती है। दैट्स व्हाई कहते हैं ना, लीव एंड लेट लीव। खुद भी खुलकर जिए और दूसरों को भी अपनी मर्जी से जीने दे। ना किसी की खुशियों का रास्ता रोके, ना किसी की आजादी पर पहरा बनाए। जब हम जी और जीने दो के सिद्धांत को अपना लेते हैं, तब समाज में प्रेम, सम्मान और सुकून अपने आप बढ़ने लगते हैं। असली इंसानियत वही है जो अपनी जिंदगी को भी रोशन करे और दूसरों की जिंदगी में भी उजाला बिखेर दे।
0: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: फटाफट एक और शिकोकू हो जाए, क्योंकि आपको ले जाने वाले हैं थोड़ी देर में, यानी कि स्पोर्ट्स की दुनिया में वर्ल्ड कप के बारे में और भी जानकारियां अपडेट्स पाएंगे। अभी के लिए ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू प्ले विद MBC एंड आप जीत सकते हैं वंस अगेन अ टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट, जो होने वाला है सैटरडे 25 जुलाई 2026 रात 7:30 बजे एट SBICC Pi। तो एक छोटा सा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, बस 5499 1294 वंस अगेन सैकत नफ नफ दोज नफ कार पर सही जवाब पूरा नाम पते के साथ आप भेज दीजिएगा। यू जस्ट हैव टू टेल मी कि अभिजीत जो है द सिंगर अभिजीत, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल प्ले सिंगर। जी हाँ, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल जो अवार्ड है उनको किस गीत के लिए मिला था? ये तो बहुत ही आसान है भाई, टेल मी। और साल अगर आप बताएंगे तो और भी बढ़िया होगा। हाँ, किस साल में अभिजीत को फीमेल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला था, किस गीत के लिए, किस साल में? फटाफट से कत नफ नफ दूस नफ कत पर

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: कोई कुछ भी कह ले भाई, the 90s era, oh my god, so romantic. 836. Well, आपसे पूछा था सवाल कि किस साल में अभिजीत को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, और सही जवाब है 1998, और गाना था मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं. अभी जो गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना, इसके लिए ही वॉन द ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर सही जवाब कईयों ने दिए हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. लेकिन एक ही लकी विनर है, एंड आवर लकी विनर इज मिस्टर अस्यदेव हुकुम, और आप रहते हैं बोनाकर. सो कंग्रेचुलेशंस, ब्रावो, एंड आपकी जीत हुई. आपको मिलता है एक टिकट फॉर द गोल्डन 90s era tour फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25 जुलाई 2026 को होने वाला है एट SVICC Pai, वेयर यू कैन स्टेप इन टू वर्ल्ड ऑफ नोस्टाल्जिया एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइंड बॉलीवुड्स गोल्डन एरा. आप एंजॉय कर सकते हैं एक रोमांटिक इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर मैजिकल मैजिक. Ticket starts us from 850 rupees and available at moticket.mu and Réseau Otayo. So don't miss this unforgettable concert experience. For more reservations, aap call kar sakte hain. Hotline hai 466-99-99-466-99-99. So humare winner ko bahut bahut badhaiyan, Mr. Asyadev Hukum of Bonakoi. And aapko aana hai MBC apne ID ke saath. आप अपने टिकट कलेक्ट कर सकती हैं.
0: रेडियो मस्ती.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
4: Get ready for the biggest World Cup ever.
5: 2026 FIFA World Cup.

0: रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको
1: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन।
2: वेल, हमारे लकी विनर को तो अपना टिकट मिल गया है, लेकिन किसको टिकट मिलने वाला है टू द फिनाले? कौन जीतेगा वर्ल्ड कप 2026? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए मोर अपडेट्स आपके साथ। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद।
3: स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2। फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में, किलियान एम्बापे के सामने मोरोको को बाप रे बाप कहना पड़ा। फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, मोरोको को 2-0 से हराकर लुब्लू चले वर्ल्ड कप जीतने। जैसा मेसी करता है वैसा ही एम्बापे करता है। फर्स्ट हाफ में एम्बापे पेनाल्टी पर स्कोर नहीं कर पाया। इजिप्ट के खिलाफ मेसी की भी यही कहानी थी, पर सेकंड हाफ में एम्बापे का एक गोल, कुछ ही मिनट बाद एम्बापे के पास पर देम्बेले का गोल, 2-0 की आसान जीत। मोरक्को को टाटा बाय बाय। क्वार्टर फाइनल तक आए, बहुत नए फैंस बने, पर सबकी उम्मीदों को खलास किया फ्रांस ने। पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी मोरक्को की हार 2-0 से, उस बार सेमीफाइनल में, इस बार क्वार्टर फाइनल में। लियोनेल मेसी की तरह किलियान एम्बापे के पास 8 गोल है। गोल्डन बूट रेस अंत तक होगा, शायद फाइनल तक, क्योंकि अगर फ्रांस और अर्जेंटीना मिलेंगे तो ये फाइनल में ही हो सकता है, इससे पहले नहीं। सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन या बेल्जियम से होगा। मॉरिशस में भी वर्ल्ड कप का जादू छा गया है। घर बैठे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर एमबीसी प्ले ऐप पर फ्रांस की जीत का जश्न मनाया गया। कई जगहों में बड़े पर्दे जैट स्क्रीन पर मोरक्को की हार का शोक मनाया गया। फ्रांस के फैंस भी आए हुए थे जश्न मनाने फ्रांस की जीत। आज का मैच 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, लॉस एंजेलिस के सोफी स्टेडियम में यूरोप के दो चैलेंजर आमने सामने। यूरोपियन चैंपियन है स्पेन, पिछले 35 मैचों में अपराजित, 35 मैच अनबीटन स्ट्रीक रेगुलेशन टाइम में। लाहौरा एक मिसाल है, मॉडल ऑफ डिफेंसिव डिसिप्लिन, अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। केप वर्दे के खिलाफ 0-0 ड्रॉ के बाद सऊदी अरेबिया को 4-0 से पछाड़ा, यूरिगो को 1-0 से, ऑस्ट्रिया को 3-0 से और 1-0 से पोर्टुगल पर जीत। लुइस डेला फुएंटे की टीम का स्क्वाड बैलेंस्ड और सेटल्ड है। लामिन यमाल, मिकेल ओयोजाबाल, कुकुरेला, पेड्री, रोड्री, ओल्मो डराने वाले नाम है। उधर बेल्जियम के रेड डेविल्स 18 मैचों में अनबीटन, अपराजित। ग्रुप स्टेज में धीमी शुरुआत रही थी, पर राउंड ऑफ 16 में यूएसए को 4-1 से सुधारा। गोलकीपर कूतवा, फिर चिलेमैंस, डोकू, डेब्रुइन, थोसा, लुकाकू जैसे अनुभवी स्टार खिलाड़ी हैं। इन दोनों के बीच हुए मुकाबलों में हर बार स्पेन की जीत हुई है, इसीलिए आज भी स्पेन को हराना पेनफुल होगा। ओप्टा सुपर कंप्यूटर ने स्पेन को फेवरेट बनाया है, 59.3% रेगुलेशन टाइम में जीत और 69.5% ओवरऑल चांस। बेल्जियम केवल 18.3%। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि ये एक लो स्कोरिंग टाइट टैक्टिकल मैच होगा, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। जो जीतेगा सेमीफाइनल में फ्रांस से लोहा लेगा। इस वीकेंड में फुटबॉल ही फुटबॉल। आज रात स्पेन वर्सेस बेल्जियम लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर और एमबीसी प्ले ऐप पर भी। फिर संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच भी आप देख पाएंगे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर। और सोमवार सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, पहला सेमीफाइनल लाइव एमबीसी टीवी पर मंगलवार 11 बजे, दूसरा सेमीफाइनल बुधवार 11 बजे, थर्ड प्लेस मैच शनिवार सैटरडे सुबह 1 बजे और द बिग वन महाफाइनल संडे 19 जुलाई को 11 बजे। क्वार्टर फाइनल के 3 मैच, सेमीफाइनल के 2 मैच, थर्ड प्लेस मैच और फाइनल सब लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले ऐप पर आप लोग देख पाएंगे। नॉर्वे के खिलाफ मैच में इंग्लैंड का डिफेंडर मार्गुए शायद नहीं खेल पाएगा, हैमस्ट्रिंग इंजुरी है। आज फिटनेस टेस्ट होगा। राइट बैक रिकी जेम्स वापस आ गया है, डेक्लेन राइस बीमार है, ट्रेनिंग नहीं कर पाया। अर्लिंग आलोन नाम का टोर्नाडो आ रहा

0: है, टोमास टुखेल को अपने डिफेंस को मजबूत बनाना होगा। आपको फिर से बता दें, फ्रांस की टीम पहुंची वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, 2-0 से मोरक्को को रोका, मोरक्को को टोका। इस तरह लिब्लू आगे बढ़ते जा रहे हैं। भूलिएगा नहीं, आज रात इट्स स्पेन वर्सेस बेल्जियम दूसरा टिकट सेमीफाइनल के लिए। ए वंडरफुल फुटबॉलिंग वीकेंड विद एमबीसी टीवी एंड एमबीसी रेडियो।
1: It was the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Morning beat.
1: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: Well, 8:53 हमारी जाने का टाइम ऑलरेडी हो गया है और मस्ती करने आ रही है अपने अंदाज में आपके विकास. Catch you very soon. Till then, take care. Have a nice weekend ahead and stay safe.

0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे है। आई मिलते हैं आस्था से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार। नमस्कार सभी को। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक मॉरिशस आए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है, यानी इस साल 9,552 अधिक पर्यटक मॉरिशस पहुँचे। हालांकि सिर्फ जून महीने में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4% कम रही। आपको बता दें कि ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने हाल में जारी किए हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक पहुंच चुका है, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन रोजमर्रा के खर्च का बोझ अब भी लोगों पर पड़ रहा है। राज्यसभा के कार्य आज सुपहर 3 बजे से फिर से जारी रखे जाएंगे। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रहेंगी। विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में है, उनमें अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव जारी है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान का कहना है कि पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हुई है। तो इस समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Oh, thank God it's a Friday, ladies and gentlemen. आप सभी का स्वागत है. Alright, morning में mood अगर तरोताजा हो तो फिर लगता है कि सब कुछ ठीक होगा. जितने भी लोग काम करना शुरू कर चुके हैं और जी म्यूजिक साथ रहने वाला है 24/7. हाल चाल कैसे हैं? काफी लोग जो सुबह कह रहे हैं कि सुबह हो गई. नहीं, सच नहीं, ये अलार्म गलत बज गया. लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस है और कल का मैच, ऑलराइट, लग रहा था कि फ्रांस ने बोला एम्बापे तुम जाकर बेटा कुछ गोल क्यों नहीं लगाते, या फिर मोरक्को को जाके रोको ठोको. इट वाज अ क्रेजी वन फॉर श्योर. और बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट पहले ही करते कि मोरक्को एक गोल भी नहीं मार पाएगा. लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना था नहीं, कुछ अलग होगा ही होगा. बट यू नेवर नो, हाँ, क्या हो सकता है फील्ड के अंदर. चलिए साहब, ये कहानी चलती रहेगी. लेकिन इट्स ऑल गेटिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं अपना जलवा दिखाने के लिए एक बार फिर से तैयार, और हम भी उनका जलवा देखने के लिए बेखरार. राइट, 10th of July, 9:07 फ्राइडे का दिन. मूवीज की बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे आपकी हमारी लाइफ स्टाइल के स्टाइल की. So stay tuned and keep on enjoying the big space of music, क्योंकि आप बन गए हमारे बंधु. मैं हूँ छोटा सा नंदू. कुछ बॉलीवुड हो गया ना.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: कॉकटेल की बात है तो लोगों ने कहा कि यार मूवी ठीक ठाक है लेकिन कहीं कुछ चीजें जमी नहीं, क्या हुआ?
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: Alright, ये थोड़े दिनों चलने वाले हैं आपकी राशि की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम कॉकटेल की. सो थिंग्स आर प्रीटी ओके फॉर कॉकटेल, क्योंकि उसके अंदर कीर्ति सानन का जो रोल है, जिस तरह उनको दिखाया गया हर चीज स्लो मोशन में, और इट्स वंडरफुल. लेकिन मूवी के लिए ये काफी कमाल नहीं कर पाया. शाहिद कपूर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर उनकी कमाल की हिट्स कबीर सिंह और जाने कौन कौन सी, लेकिन फाइनली ही केम टू अ डिफरेंट स्टारडम लेवल ऑल टुगेदर. लेकिन फिर जब ये मूवी की तो लोग कह रहे थे कि नहीं, नॉट रियली, हाँ ये इससे बेहतर हो सकता था. एनीवेज द मूवी इज डूइंग ओके. और वहीं पर आज की बात करें तो 10 जुलाई आने वाली बड़ी पिक्चर है, दैट्स धमाल 4. अजय देवगन है, रितेश देशमुख, अर्षद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी और ऐसे बहुत सारे नाम. पागलपन तो गारंटीड है. और वहीं पर एक का एक है सनी देओल की पिक्चर अक्षय खन्ना के साथ, दिया मिर्जा आने वाले हैं साथ में. देखते क्या कमाल करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बॉक्स ऑफिस का. तो अभी जो सिलसिला चल रहा है, नंबर वन पर बैठी है धुरंधर, कोई नहीं पहुंच पाया उसके अंदर. वहीं पर बॉर्डर 2, भूत बंगला, बट वेलकम टू द जंगल, ये 100 करोड़ से ऊपर तो निकल गई. कॉकटेल भी निकल गई 100 करोड़ से ऊपर. अब देखते हैं ये जो ऊपर बैठी पिक्चरों को कितना देती है टक्कर, बनाती है माल धमाल.
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चल मॉर्निंग में अगर लेडी लग भी 7 दिन लगे तो मजा आता है नहीं. शुरुआत करते हैं वेद.
2: एरीज मेष राशि.
1: भाई आज आपकी जो एनर्जी है फुल ऑन रहने वाली है. बस उसे सही डायरेक्शन देना जरूरी होगा. ऑफिस हो या बिजनेस, अरे कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है. गुस्से में किसी को इंस्टेंट रिप्लाई देने से बचना वरना बंद में अकेले में कहीं पर भी आप सोचें कि ऐसा क्यों हुआ. शाम को फैमिली या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा. जोश हो ना कम, लगे रहो लगाते रहो दम.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: भाई आज पेशेंस ही आपका होगा असली सुपर पावर. पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई पुरानी पेमेंट सामने आ सकती है. दिल की बात बोलने का सही टाइम है लेकिन प्यार से. शॉपिंग का मूड बनेगा. बजट का भी थोड़ा ख्याल रखना. स्माइल करते रहो, लक भी मुस्कुराएगी. दिल रखो कूल, हर चैलेंज हो जाएगा सामने से गायब. अरे क्यों टेंशन लेते हो फिजूल.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: भाई यार आपकी बातें हैं सबका दिल जीत सकती हैं. मीटिंग्स, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में आप शाइन करोगे. थोड़ा मल्टीटास्किंग कम करो वरना दिमाग बफरिंग मोड में चला जाएगा. ये भी कर लूं वो भी कर लूं. किसी पुराने दोस्त का मैसेज सरप्राइज दे सकता है. पॉजिटिव वाइब्स मेंटेन रखो. सोचो स्मार्ट और जीतो हर एक हार्ट.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: भाई आज इमोशंस थोड़े हाई हो सकते हैं लेकिन वही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मूड को और बेटर करेगा. करियर में कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड मिलने से चांसेस आगे बढ़ते जाएंगे. किसी की बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. अपने पीस को प्रायोरिटी दो. मंत्र आपका यही है, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को गले लगाते रहो.
2: लियो सिंह राशि.
1: लियो जो भी काम मिले उसको कर दियो. वैसे स्पॉटलाइट आपके नाम पे रहने वाली है. कॉन्फिडेंस से किया हुआ काम अप्रिसिएशन जरूर दिलाएगा लेकिन ऐसा ना हो कि भावनाओं के बहाव में आप बह जाएं. कुछ जो नहीं कहना वो कह जाएं.

0: ले थोड़ा सोच समझ कर धैर्य क्रिएटिविटी को खुलकर दिखाइए क्योंकि कई चीजें हैं जो आपके अंदर हैं लेकिन आप उनको दिखाते ही नहीं मतलब चालू हो तो बस इंजन चालू कर दो किंग वाली वाइब आपका सक्सेस ही ट्राइब
1: वर्गो कन्या राशि
0: भाई आज प्लानिंग और डिसिप्लिन आपको सबसे आगे लेकर जाएगी छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करना फायदेमंद रह सकता है किसी की अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो लेकिन अगर कुछ सीख सकते हो तो क्यों नहीं हेल्थ रूटीन को स्किप बिल्कुल मत करना दिन के एंड तक सैटिस्फैक्शन फील होगा फोकस रखो टाइट फ्यूचर होगा ब्राइट
1: लिब्रा तुला राशि
0: भाई आज बैलेंस बनाना ही आपके लिए जीत की चाबी बनेगी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं ऑफिस में टीम वर्क से कमाल होगा खुद को थोड़ा पैम्पर करना जरूरी है तो सोच लो वीकेंड में कहीं बाहर जाकर फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम आइन स्पेंड प्लान कर लो दिल और दिमाग दोनों की सुनो मंत्रा बैलेंस का गेम सक्सेस है इसी का नेम
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि
0: भाई आज आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ऑन पॉइंट रहने वाली है किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हो तो प्रोग्रेस दिखेगी जेलस लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव वाइब देते हैं फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेना कॉन्फिडेंस आपका असली वेपन होगा हौसला रखो हाई जीत होगी स्काई हाई
1: सजिटेरियस धनुराशि
0: एडवेंचर का मूड बन सकता है और नए आइडियाज भी आएंगे लर्निंग और ग्रोथ के लिए शानदार दिन है किसी नए इंसान से इंटरेस्टिंग कनेक्शन बन सकता है हाँ जल्दबाजी में प्रॉमिस करना बिल्कुल ना आगे बढ़े स्माइल के साथ हर चैलेंज इजी लगने लगेगा सपने रखो बड़े कदम बढ़ते रहे
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
0: भाई हार्ड वर्क का रिजल्ट धीरे धीरे सामने आता है थोड़ा पेशेंस बॉस हो या सीनियर्स आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं फैमिली के एडवाइस इग्नोर बिल्कुल मत करना पैसों को बहुत ही असली तरह से मैनेज कीजिए कुछ प्रोविजन रखिए कभी कभी ऐसे खर्चे आते हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं पेशेंस ही आज का मैजिक वर्ड होगा मेहनत का गेयर सक्सेस काफी नियर
1: एक्वेरियस कुंभ राशि
0: भाई आज क्रिएटिविटी फुल ऑन पावर मोड में रहेगी कुछ नया करने का परफेक्ट दिन है फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक मूड फ्रेश रहने वाला है कुछ प्लान्स बना लो सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल सकता है बस ओवरथिंकिंग को ऑफ मोड पर रखो और अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस के साथ बैठकर गोल वो वाली जो फीलिंग है आ जाए तो बस अपने लाइफस्टाइल पार्टनर को जरूर करीब बुलाएं सोचो हटके जियो डटके
1: पाइसेस मीन राशि
0: आज इमेजिनेशन और इंट्यूशन दोनों स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं क्रिएटिव काम या हॉबीज में दिल लगाओ किसी अपने से दिल की बात जरूर शेयर करें क्योंकि जब ऐसा होता है तो दिल हल्का होता है हेल्थ के लिए प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी खुद पर रखो यकीन हर दिन होगा बेहतरीन
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: भाई सोचो तो ये जो मौसम है वो भी वर्ल्ड कप ही खेल रहा है हमारे साथ. आप मैदान में उतरते हो और फिर कभी बारिश हो जाती, कभी धूप निकल आती है और फिर लगता है रेफरी ने सीटी बजा दी, आप शेल्टर ले लेते हो. जिंदगी में बस ऐसी होता है, जब आप बाहर निकलते हो तो रियलाइज़ करते हो कि अरे ये सब तो प्लानिंग में नहीं था, है ना. जैसे होता है कि आप एग्ज़ाम लेने के लिए गए और फिर जो आपने तैयारी की थी वो आउट सब्जेक्ट कुछ आ गया. लेकिन ज़िंदगी ये अपने अनुभव से चलती है, यानी कि आपको पता है कि इस सिचुएशन में कौन सी वो चीज़ है जो आप कर सकते हैं. लेकिन ठंडे दिमाग से काफ़ी बार होता है कि आप बस इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई डिसीजन ले लेते हैं या फिर कुछ कह देते हैं और फिर रिलाइज करते हैं ये तो नहीं होना चाहिए था. इसलिए एक गोल्डन रूल रखिए कि इससे पहले आप रिस्पॉन्ड करें, टेक अ ब्रेक 10 सेकंड के लिए, खाली उस इंसान को देखिए और देखिए कि गुस्से में जो कह रहा है वो डजंट मीन इट. उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, आपका गुस्सा कम हो रहा है क्योंकि आपने एक अलग नज़रिए से उसको देखना शुरू कर दिया है ना. मैच्योरिटी चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए. और ऐसे हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में अपने अनुभवों को लेकर, जहाँ पर कोई कहता है कि मॉर्निंग में तैयार होना इट्स नॉट ईजी एट ऑल. अरे साहब दोपहर में तो काम शुरू होता नहीं, थोड़ी सी जल्दी सो जाएंगे उसके बाद मॉर्निंग की प्लानिंग हो जाएगी तो सब कुछ ठीक. सारा बानू अब्दुल कहते हैं कि भाई मॉर्निंग में तैयारी हो जाती है और हम जुड़ जाते हैं रेडियो मस्ती के साथ, थैंक यू सो मच. एंड वरुण को हैप्पी बर्थडे, ये कविराज की तरफ से. रवीना है, श्रिया, आकाश, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार. सो बस ऐसे ही लोगों से मिलते रहो, ऐसा आप खुशबू तो चारों तरफ है, फूलों की तरह खिलते रहो.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Alright, जी, वीकेंड के प्लान सो बन गए, लेकिन साथ में अगर सोचें तो बैटरी को रिचार्ज करना तो होता ही होता है, लेकिन वीकेंड को सिर्फ सोने या मोबाइल स्क्रॉल करने में मत गुजारिए। इस बार थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताइए। सच मानिए कि आप अपने फ़ोन को जब वो डाउन होता है तो चार्ज करके एकदम से सेट कर लेते हैं, लेकिन जब फैमिली की बात आती है, रिश्तों की बात आती है, तो वो होता है साथ में टाइम स्पेंड करके ही। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। रिसर्च बताती है कि फैमिली के साथ रेगुलर क्वालिटी टाइम स्ट्रेस को कम करता है, इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत बनाता है और खुशियों का लेवल बढ़ाता है। ओहो, ये बात हो गई ना। सबसे खास बात यही कि फैमिली को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं, आपका वक्त चाहिए, और अगर आप ये दे सकते हैं तो इससे बड़ा इनाम किसी के लिए और नहीं हो सकता। नो फोन्स फॉर 1 आवर प्रॉब्ली, ऐसी रखिए ये कहानी, और ओनली स्माइल्स एंड कॉन्वर्सेशंस। साथ में बैठकर मैच देखना, कुछ साथ में पकाना, कुछ बातों को एक बार फिर से याद दिलाना, याद है पहले क्या होता था, छोटी छोटी बातें। बस यही है कि फैमिली के साथ बिताया हर पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को याद दिलाता है, इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा के लिए है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Okay, good morning. Time check. It's 10 a.m. थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार. स्टूडियो में आगे आसान से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
6: नमस्कार. 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली है. जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,471 पर्यटक आए. ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है. हालांकि सिर्फ जून महीने में पर्यटकों की संख्या जून 2025 की तुलना में 8.4 कम रही है. ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने कल जारी किए. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही. कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, जबकि निर्माण और कपड़ा उद्योग जैसे सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 7 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 111.9 से बढ़कर 112.2 अंक कर दिया गया है, यानी इसमें 0.3% की वृद्धि आई है. राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी. इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचे हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई. न्यूजीलैंड की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है. ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली आधिकारिक यात्रा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के श्री मोदीमुतु हसन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दसन के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले आजसू के DCP रह चुके हैं. उनकी अर्थी आज दिन के 3:45 उन्हीं के मकान पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोते मोहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 3:15 PM. मोसल मोफियानी रिविया दे क्रियोल में 76 साल की 76 years old की हनंता मुदिकादू की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बहन सीतामा मुनिकादू के मकान मोसल मोफियानी रिविया दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पैनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 2 PM. मोसलमान MDA सेकोस्टांस सेंट पियर में 74 साल की 74 years old की द्रौपदी तिलोकी की मृत्यु हो गई है. पैदाइश राम बंधु, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टांस सेंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 4 PM. शोक डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: अच्छा, काफी लोग बात कर रहे हैं कि कॉकटेल के बाद एक मूवी रिलीज हुई अल्फा, लेकिन उसके बाद होता ना अल्फा बीटा गामा, बताते हैं उसके बारे में भी, चाहेंगे सुनाना?
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: ये बॉलीवुड का बिजनेस जहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े बड़े स्टार्स एंड इतना पैसा लगाकर मूवी बनती है, लेकिन पब्लिक जनता ही डिसाइड करती है कि क्या होगा। राइट, बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें पकड़े 2 to 4 के बीच में। यस, वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट सॉन्ग्स, द लेटेस्ट न्यूज कमिंग, और वहीं पर अल्फा तो रिलीज होगी लेकिन धमाल 4। अच्छा धमाल, कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि हमेशा बहुत पॉपुलर रही, हेरा फेरी हो, धमाल हो, गोलमाल हो, थिंग्स हैव बीन जस्ट गोइंग ऑन फॉर देम। और एक बार ही आपने उसमें डेब्यू कर लिया तो आपको बताएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेगी, उसमें काम तो चल ही जाएगा। ओह माय गॉड, इट्स ऑल गोइंग गुड एट द मोमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की भी, तो फुटबॉल की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, आपके साथ हमेशा है, साथ देते रहते हैं और कहते हैं कि आपके लिए लेकर आते हैं द लेटेस्ट अपडेट्स। आज सुबह जहाँ पर हर कोई बात कर रहा है फ्रांस और मोरक्को की, वहीं पर कल की कहानी बताऊँ, देखते हैं क्या होगा। यस, क्वार्टर फाइनल्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए फ्रांस तो बिल्कुल सेट, देखते हैं कौन उसके साथ आता है। एंड वहीं पर एक बड़ा मैच होगा अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड। अर्जेंटीना की खुशी के साथ काफ़ी लोग खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये जो जीत उनको मिली है लगता है कि अब रेफरीज भी मेसी को फेवर कर रहे हैं। भाई ऐसा होता नहीं आजकल, तो आपको बताया कि VAR सब कुछ है ही है। एनीवेज, हम भी VAR के साथ तैयार हैं, लेकिन ये होगा ऑन बॉलीवुड। चलिए बातें चलती रहेंगी, ये सिलसिला चलेगा टिल 12। Stay tuned.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Right, the music continues, लेकिन साथ साथ में ऐसे भी लोग हैं जो भी अभी घर पे हैं और सुबह की भाग दौड़ के बाद अभी थोड़ा काम चलता ही रहता है, लेकिन कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें अगर घर पर हैं और बहुत सारा काम होता ही है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले तो थोड़ा सा नेचर वॉक. कहते हैं कि जब आप नेचर में जाते हैं ना तो एकदम से मूड रिफ्रेश हो जाता है. दिन की शुरुआत एक सिंपल रूटीन के साथ, सुबह थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हल्की सी वॉक, मेडिटेशन से दिमाग फ्रेश रहता है और दिन भर प्रोडक्टिव बन जाता है. अपने दिन को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए. हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे बॉलीवुड की मूवी होती है ना, एक हाफ और दूसरा हाफ. अब तो फुटबॉल की बात हो रही तो चलिए उसका भी एक हाफ एक्स्ट्रा टाइम बन डालना. तो घर के काम, अपनी हॉबी, थोड़ी सी रीडिंग, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम. हाँ, याद रखिए कि हर वक्त बिजी रहना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखना और ख़ुद के लिए वक्त निकालना ये बहुत ज़रूरी है. नेगेटिव थॉट से बचने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए. रोज तीन ऐसी चीज़ें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं. छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स ही बड़े कॉन्फिडेंस और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद बनती हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप घर पर हैं और कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है, अरे कोई एक्टिविटी, या फिर आपने सोचा कि नहीं नहीं मैंने सोचा था इस रूम को एक नया स्टाइल देंगे, एक नया लुक देंगे प्रॉबेबली, तो बस आप थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, इंटरनेट का सहारा, मतलब कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो. बस रूटीन रखो सिंपल, सोच रखो पॉजिटिव, हर दिन बनेगा प्रोडक्टिव और ब्यूटीफुल.

0: to
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: हम इसके इतने सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब ठंड आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग तैयारी कर लेते हैं कपड़ों की मैचिंग, या फिर आपको लगता है कि अगर आप डेनिम जैकेट ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर आपको वार्म रखने के लिए टर्टलनेक्स। हाँ, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आज इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रॉम द मूवी भूल चूक माफ। इस मूवी की तरह चीज़ें सिंपल और रिलेटेबल रख सकते हैं, फैशन कभी फेल नहीं होगा। कॉटन शर्ट्स, ब्रीजी कुर्तीज, रिलैक्स फिट जीन्स, पैस्टल शेड्स, भाई काफ़ी ट्रेंडिंग तो है ही है, लेकिन साथ साथ में आप अपने आप को कवर अप करने के लिए, जिसमें मैंने कहा कि चाहे आप डालना चाहते हैं एक शॉल, या फिर आप डालना चाहते हैं एक डेनिम जैकेट, ये आपके ऊपर, क्योंकि कुर्ते के साथ डेनिम जैकेट गोज रियली वेल। अगर आपका आउटफिट बेसिक है तो एक स्टाइलिश पेयर ऑफ स्नीकर्स, एक स्मार्ट रिस्ट वॉच, उसमें इंस्टेंट चार्म ऐड कर सकता है। और हाँ, सीजन के हिसाब से कंफर्टेबल फैब्रिक चूज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होते हैं ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली शाइन करता है। तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना फेवरेट जो आउटफिट है वो पहन लिया, अब अपने आप को वार्म रखने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि जो आपने पहना उसको टोटली छुपा दें, हाँ, लेकिन एक कंट्रास्ट कलर डालकर उसको निखार जरूर सकते हैं। Enjoy yourself and keep the fashion sense going on.
0: Fashion tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: ये तो कहते हैं 7 on 7 24/7 द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हैपनिंग राइट हियर.
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: वैसे कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो काम करते हुए बीच में छोड़ा ब्रेक या फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उनका साथ दे रहे हैं. वेरी नाइस. ऐसे ही हॉस्पिटल्स में हो या फिर कहीं भी ऑफिसेज में यहाँ पर एक पैंट्री के अंदर कुछ म्यूजिक चल रहा हो, है ना, उन सभी का बिग हेलो. एंड म्यूजिक अगर मोटिवेशन देता है तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं. चलिए जानते हैं आपकी साइड पर क्या चल रहा है, मौसम कितना ऑसम. गुड गुड मॉर्निंग. साथ दे रही है साधना जी विधि खोल से और कहते हैं एंजॉय द म्यूजिक. आज इतनी बारिश नहीं हो रही, शाइनिंग है और जीवन फैमिली के लिए विधि खोल से उनके लिए लगाना हो जाए. जी हाँ, ज़रूर मौसम थोड़ा बेहतर होना ही था, है ना. कपड़े नहीं सूख रहे चारों तरफ, पच पच ओ मामा. वहीं पर कहते हैं गुड गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार फॉर द होल टीम सीतोहल उनका नाम. ऑलराइट, थैंक यू जी आपके मैसेज के लिए. वैसे आजकल इतने सारे मैसेजेस बस हम फॉरवर्ड कर देते हैं लेकिन दिल से कुछ लाइंस लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है. नहीं, वहीं पर श्वेता रविश विशाल अविशा एन अपाटू फैमिली से होश वहाँ से साथ दे रहे हैं. और ज्योति शाह तो बनारस से, हेलो जी. रेशमा जी पुदे दो आमलेट से और कहती हैं डेडिकेटिंग सॉन्ग फॉर माय बेटी, उनके लिए प्लीज़ एक गाना चलाइए. और साथ में कहती हैं जय माता दी. जी हाँ, आपके लिए ज़रूर. और संध्या के लिए मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

ये मूवी बहुत कमाल की थी. नहीं, आमिर खान, उनकी तीसरी शादी और ये मूवी फ्रॉम थ्री इडियट्स. नहीं, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर मीम्स काफी सारे बन रहे हैं, लेकिन नॉट अ कोइंसिडेंस.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीए सेल्स लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावर ला लिनियर मॉडर्न प्री शॉक लो डोज अबान प्री की पुफे ओ मेम गाय पाको डेकोरेशन

0: इधर परफेक्ट सॉन्ग बढ़ जाता है ना व्हेन इट कम्स टू खाना पीना उसके बाद थोड़ी सी जलेबी बेबी खाने पीना प्लान या जो भी प्लान हो म्यूजिक को जरूर शामिल कीजिए हमेशा 24/7
1: RM2 Radio Masti
0: वैसे गाने के साथ चल रहे हैं अब सीधा 11 बजे के समाचारों की ओर इसके बाद मुलाकात होती है 11 से 12 के बीच में एक और घंटा बाकी अपनी मुलाकात

0: Friday, 10th of July, time check, exactly 11 a.m. राशि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ संक्षिप्त समाचार के साथ स्टूडियो में आ गई आस्था, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष अब तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि जून महीने में आगमन में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी से जून 2026 के दौरान मॉरिशस में 6,78,771 पर्यटक आए, ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी है। ये आंकड़े स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने जारी किए हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का सिलसिला जारी, लेकिन इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 30 जून को जारी ताज़ा आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही, पिछले वर्ष की समान अवधि में ये 3.4% थी। कुछ सेक्टरों में अब भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। राष्ट्रसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी, इस दौरान डोमेस्टिक अप्यूस बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। मॉरिशस पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मोदी मुतु हसन का कल 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत स्पेशल मोबाइल फोर्स से की थी, बाद में वे पूर्व राष्ट्रपति कसमुद्दीन के सैन्य सहायक भी रहे। उन्होंने सेंट्रल डिवीजन का नेतृत्व किया और अपने कैरियर का समापन एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट यानी आजसू के प्रमुख के रूप में किया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे किया जाएगा। 2018 में फोंजीसाक में पिता और बेटी की हत्या के चर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट को पहले यह तय करना होगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद ही मामले की आगे सुनवाई होगी। 8 जुलाई को चीफ जस्टिस बीबी रेहाना मंगली गुलबुल और 2 अन्य जजों ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। न्यूजीलैंड की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली आधिकारिक यात्रा है। हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन जैसे सेक्टरों में सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। क्रिमेशन रोड घोषणुआ में 65 साल के 65 years old के अभिमन्यु इमांती की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके दामाद अनिल कपूर पादयाची के मकान घोषणुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कोंकाहोल केन्या में 64 साल की 64 years old की श्रीमती मांती नायकू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सिपौसाट, लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

जब ये गाना सुनता हूँ तो याद आती है लेट श्रीदेवी. व्हाट एन एक्ट्रेस, व्हाट अ परफॉर्मर. इतने कमाल के इमोशंस एंड जो प्रेजेंस ही टीवी पर, माय गॉड. बड़े पर्दे पर जो उन्होंने सितारों का जलवा बिखेरा वो अभी तक हम याद करते हैं. फ्रॉम चालबाज टू नवराज नवराई माझी, राइट. दिस वॉज फ्रॉम इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन क्या कमाल की एक्टिंग है ना. ओवर टाइम शी वॉज जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी तो आपसे ये दरख्वास्त है कि सुनते रहो. 10th of July, फ्राइडे का दिन. चलिए मूड को थोड़ा ऑन रखते हैं जहाँ पर वीकेंड के प्लान्स बन रहे हैं, और वहीं पर मूड ऐसा ही है कि थोड़ी सी पार्टी हो जाए या फिर उस वाइब को एक बार फिर से चारों तरफ फैलाएं, तो दिस कुड बी द राइट वन. तैयारी खाने पीने की,

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जी हाँ, कोई फिट रहना चाहता है और चाहता है कि खाना पीना अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, लेकिन ये सब ना पॉजिटिव थिंकिंग से ज़रूर आता है। जब आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगर आप खा पी लें जो भी, लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी को पाल लें तो फिर होगा तो कुछ नहीं नहीं। इसलिए पहली चीज़ यही कि जाकर जब आप वापस आते हैं काम से, थोड़ा वक्त बिताइए आराम से। डोंट जस्ट गेट इनटू कोर्स कि आप सोचें कि अब ये भी करना वो भी करना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को दो, यानी कि ये सोचो आज पूरे दिन क्या हुआ, क्या आप शेयर करना चाहेंगे, और शेयर करने से आपको दूसरे का व्यू पॉइंट मिलेगा, साथ में बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा है वो अपनी हर दिन की कहानी भी शेयर कर रहा है, इससे बढ़िया और बेहतर क्या नहीं। वो बहुत एक लवली रिलेशनशिप हो जाती है जहाँ पर हर चीज़ आप बताना चाहते हैं। यू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग आप, जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं हमेशा। 5491294 पर आप कितने सारे मैसेजेस, थैंक यू सो मच, कहते हैं एंजॉइंग द सॉन्ग्स। और बस मॉर्निंग शुरुआत कीजिए माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ। बहुत बढ़िया आरती जी, नमस्कार आपको भी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग कहते हैं यालेश। और एक प्यारी सी एक लड़की जो फूलों से घिरी हुई है उसकी फोटो भेज कर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चलिए साथ में कहते हैं देविका हूँ एंड पेरिस से सुन रही हूँ, हे गुड गुड मॉर्निंग। ये है फ्रॉम मॉरिशस, आपके साथ क्या हो रहा है चलिए हमें ज़रूर बताइए, जहाँ पर म्यूज़िक के साथ आप जुड़ गए हैं। एंड आपकी वो कौन सी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं जिनको याद करके आप अभी भी मुस्कुराती हैं, हमें बता सकती हैं 5491294 पर। वही भाई रीना जी, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, कहते हैं घर का काम चालू है लेकिन म्यूजिक भी फुल ऑन चालू।
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग बाद गुड आफ्टरनून कहने का बस टाइम आने ही वाला है, बस 15 मिनट और उसके बाद सेफली लैंडिंग इन टू अनदर जोन. अरे ऐसा कुछ नहीं, बस गुड आफ्टरनून वाला. गुड मॉर्निंग के बाद गुड आफ्टरनून. आप कहीं से भी हमारे साथ दे रहे हो, वेलकम टू द वीकेंड काउंटडाउन. जी हाँ, वैसे होता है कि थर्सडे को प्लानिंग शुरू होती है और जब फ्राइडे आ जाता है तो थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे. जो काम का हफ्ता है वो पीछे रह गया, एनर्जी राइज कर रही है और इट्स टाइम टू मेक दोज वीकेंड प्लान्स. भाई चाहे फुटबॉल के फैन हो या फिर जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट यू नीड टू गेट एक्साइटेड अबाउट. जहाँ वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं वहीं पर परफेक्ट चांस है दोस्तों के साथ मिलकर कुछ फेवरेट टीम पिकअप करके. नहीं वैसे तो होगी आपकी, एक सेटअप कीजिए बिग स्क्रीन या फिर कुछ स्नैक्स या फिर मैच डे के दिन

0: full-on celebration. सब कुछ bring and share की report बनाएं, हाँ? अपने colours मैंने जो team को दर्शाते हैं, invite the crew over, थोड़ा सा drama, थोड़ा सा goals और unforgettable football moments. और अगर football आपकी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, weekend तो खुला ही है. एक relaxed family day, beach की trip या फिर catching up with the friends, एक नया restaurant try करना या फिर कुछ नई recipe try करना. चाहे कल की शुरुआत हो एक मॉर्निंग वॉक के साथ या फिर रात को बारबेक्यू या फिर नेबर्स के साथ ऐसे ही चिट चैट, कुछ तो प्लान कीजिए क्योंकि जिंदगी में एक्साइटमेंट ना हो फिर लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है वैसे ही 24/7. तो बस जो भी चूज कीजिए, फुटबॉल फीवर हो, एडवेंचर हो, अच्छा खाना, गुड कंपनी या फिर म्यूजिक, अरे सब कुछ है यहीं पर. जाना है कहां संगीत का जहां.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

जिस गाने के साथ मैं चाहूँ इजाजत, अपने इट्स गोना बी रेट्रो रिदम, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, एंड ये इट्स अ फ्राइडे, यू मस्ती पवन की और स्माइल दुल्हन की, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, 24/7 आपके साथ।

इस वर्ष अब तक पर्यटकों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से जून 2026 के दौरान 668,471 पर्यटक देश पहुंचे, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.5% अधिक है। उधर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि दर 2% रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कम है। वहीं जून महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि एक वर्ष के आधार पर महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है। राज्यसभा की बैठक आज दोपहर 3 बजे फिर से शुरू होगी। इस दौरान डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी जाएंगी। 2018 के फोजीसाक दोहरे हत्याकांड में कानूनी प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय करेगा कि डीपीपी को उमेश कुमार बाबूलाल के बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने का अधिकार है या नहीं। मॉरिशस पुलिस फोर्स के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मोदी मुतुगा सेन का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे सैमोते में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी। अमेरिका ने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया, जबकि ईरान के अनुसार पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हुई। और अंत में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 देशों में पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के 64 years old के श्री मोदी मुतुगा सेन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दासन के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज 3:15 बजे उन्हीं के मकान वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोते मोगोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:15 PM। कौलीला चमेंग्रेनी में 82 साल की 82 years old की बीबी सारा यासिम पैदाइश नाम डुलो इंतकाल कर गई हैं। लोग उन्हें सारा के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज यासिम के मकान शमेंग्रेनी से निकाल कर दफनाने के लिए कौशलुट शमेंग्रेनी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। Avenue de Deux, l'Espérance Pitomé, 72 साल की 72 years old की शांति देवी शंभू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बद्री, लोग उन्हें बसंती के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के मकान Avenue de Deux, l'Espérance Piton से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। कालीमाई पालमा काटोबोन में 65 साल के 65 years old के जसोनाथ बोयरू की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार 12 जुलाई को दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान काटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 12 जुलाई एट 1 PM। वाल्टों मोताइलोंग में 62 साल के 62 years old के सत्यानंद एटवारा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अजीत के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 9:30 बजे उनकी पत्नी बबीता एटवारा के मकान मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों तेरूश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। मोसेमो माउंट पोम्पलेमुसेज में 80 साल के 80 years old के प्रेमानंदा मंगापति की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नंदा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी रविवार को 12 जुलाई को सुबह के 9 बजे उन्हीं के मकान पोम्पलेमुसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 12 जुलाई ऑन एट 9 AM। मोसेलमो एमडीए सेकोस्टांस सैंपियामे 74 साल की 74 years old की द्रौपदी तिलोकी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बंधु, लोग उन्हें उमा के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उन्हीं के मकान सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM।

0: शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: दिल से दो जो जहां दे दे, मैजिकल गाना जो अभी भी लोग एंजॉय करते हैं। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका वंस अगेन आरएमजू रेडियो मस्ती पर। इट्स नमनी और रेट्रो रिदम के इस प्यारे सफर में साथ देने वाले हूँ दो बजे तक का, तो यही पर आप जुड़े रहिए और एंजॉय करते हैं साथ में टाइमलेस रेट्रो हिट्स को।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजू रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: Yes, आप कनेक्टेड हो चुके हैं रेट्रो रिदम के साथ. 12:26 हुए हैं और टाइम भी हुआ है लंच का. कुछ लोगों ने तो खा लिया होगा लंच और कुछ डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या खाए. वेल, एक न्यूज़ है आपके लिए. आज है फ्रेंच फ्राइडे और अगर आप डाइट पे हैं तो आज ऑफिशियली एक छोटा सा चीट डे तो बनता है. लाइफ में कभी कभी

राइस की तरह थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा सोल्टी और थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो ऑफिस में हो अभी आप या फिर घर पर, आज एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज का अपने फेवरेट रेट्रो रिदम गाने के साथ एंजॉय कीजिएगा ज़रूर। कैलोरीज कल देखेंगे, वाइब्स रुकनी नहीं चाहिए। तो हो जाए आपके लिए एक और गाना रेट्रो रिदम में।

0: रेट्रो रिदम।
1: येसुदास जी की आवाज में, सुरमई आंखों में कैसा मेलोडियस आवाज है ना। तो आप सभी का स्वागत है, अगर आप अभी अभी कनेक्टेड हुए हो आरएमजे रेडियो मस्ती के साथ। यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि यादों का एक खजाना है। अगर आज का दिन थोड़ा हेक्टिक लग रहा है अभी से ही, तो टेंशन को साइड में रखिए और चलिए चलते हैं उस दौर में जब मेलोडीज सीधा दिल तक पहुँचती थी। तो ये गाना खास आपके नाम करते हैं आरएमजे रेडियो मस्ती पर।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Retro Rhythm.
1: एक पल रुके, एक पल चले, जिंदगी की टायर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कभी कभी स्मूथ रोड पर बिना किसी दिक्कत के चलते रहते हैं और कभी अचानक बीच रास्ते में रुक जाते हैं, जैसे कि उनकी हवा निकल गई हो। लेकिन हर पंक्चर का सोल्यूशन होता है, बस नज़रिया पॉजिटिव रखना है हमें। खुशियों वाले लम्हों को याद रखें, मुस्कुराते रहिए, और अगर मूड की हवा थोड़ी कम हो गई है तो फिक्र मत कीजिए, हम है ना एक से बढ़कर एक गाने लेकर आएंगे जो आपके दिन को फिर से फुल ऑन एनर्जी से भर देंगे। तो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और म्यूजिक के साथ चलते हैं RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे

तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

0: कहो भी हमसे लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रसभा के कार्य आज दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित होगा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुलेजोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मादे मुचुरा सेन का निधन 64 साल की उम्र में हो गया है। अपने लंबे करियर की शुरुआत उन्होंने SMF के साथ की, जिसके बाद वे रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर बने। उन्होंने कई राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा का संचालन किया। उन्होंने डिविजनल कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में भी काम किया। MBC शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। फुटबॉल की दुनिया में आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ। MBC 11 पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले रात 9:30 बजे से MBC की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा, देखना न भूलिए। विदेश में चीन के दक्षिण पूर्व शहर जिनयांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए। कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गया। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी, करीब 240 लोग वहां काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाएगी। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 72 लोहिकोल वाली पिचो में, नंबर 72 लोहिकोल वाली लोहिकू वाले पिचो में 81 साल के 81 years old के जनाब करमद अली महमद ममद अब्दुल रजाक, जनाब करमद अली ममद अब्दुल रजाक, जो बाई शरीफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 3:30 बजे उनके मकान नंबर 72 लोहिकू वाली पीतो से उठाकर सबसे पहली नमाज जनाजे के लिए कासी के मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बैरीडाम कासी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। कौन लीला शुमे घोनी में 82 साल की 82 years old की मिसिस बीबी सारा एयासीम, मिसिस बीबी सारा एयासीम पैदाशी नाम दुलो और जो सारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी उनका जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज़ एयासीम के मकान कौलीला शुमेघोनिया से उठाकर दफनाने के लिए कौशौलू शुमेघोनिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन में, नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के 64 years old के श्री मदेमुतु रासेन, श्री मदेमुतु रासेन जो दासेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और आजसू में पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सपहर 3:15 बजे उनके मकान नंबर 491 एल्डबेरी रोड 2 पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतै मोहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:15 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news us on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: Retro Rhythm.
0: RM2. Radio Musty. Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: मन तो यही है लेकिन खोने के चांसेस बड़े हाई है अगर रेट्रो के रोमांटिक गाने हमने चलाने स्टार्ट कर लिए। एंड वैसे रेट्रो रिदम के आखिरी आओ में आपका स्वागत है, इट्स निर्मनी, जहां पर 70s, 80s और 90s के गाने आपको वाइब कराने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपको बस यही पर साथ देना है आरएमजू रेडियो मस्ती पर।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:17 होने को हैं और आपके मैसेजेस फुल जोश के साथ आ रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। वाकवा से आप है विश्वानी धूमन जी, गीत मांग रहे हैं अपने बहनों के लिए। इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता, गजधर जी के लिए। एंड नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है देवदोस सुनिचर जी की तरफ से, एंड कावलेस ऑफ फैमिली की तरफ से। आप गाना मांग रहे हैं धनेश्वर जी के लिए, पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा, माला, रानी, मीना, ऋषि। एंड वी हैव हमारे बड़ी जो कनेक्टेड है सोहिनाम से, और अच्छा सा गाना, प्यारा सा गाना मांग रहे हैं अपने लिए। और बोंकू हाज विश कर रहे हैं आप सभी को जो भी काम पर है। एंड कैथो बोन से वी हैव अनिश्ता गंगा बिसुन जी, गाना मांग रहे हैं तनवीर के लिए। आयशा, तेजल, रैना, रायन, करुणा, कमीन, तराशचन एंड कमला गंगा विसुन जी के लिए। एंड वी हैव मोताई ब्लॉन्च से इंदिरा जी, रेशमा जी, विमल जी, अंजू, कृषा, केशव, नील, महिषा, तानिया। एंड आखिर में वी हैव मैसेज फ्रॉम फिदू जी जो फ्रांस की रहने वाली है। आप डेडिकेट करना चाहते हैं बर्थडे सॉन्ग अपनी कज़न रीना के लिए जो कि फ्लैग के रहने वाले हैं। आप उन्हें विश कर रहे हैं गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स एंड अब ढेर सारा प्यार। बेस्ट रिगार्ड्स टीम के लिए। थैंक यू। तो हो जाए आपके प्यारे कज़न रीना के लिए गाना। एंड जो दोस्त जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे ये मेलोडी आज भी लोगों को याद है, हमारे सिंगर मुकेश जी की आवाज में एक दिन बिक जाएगा। आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं जोरों शोरों से 5499-1294 पर हमें भेजना ना भूले, संकोच ना करें। ओनली द बेस्ट वेटिंग फॉर यू RM2 रेडियो मस्ती पर। अभी अभी मैसेज आया है पेरिस से देव साहब की तरफ से, आप सुनना चाहते हैं गाना तुझे देखा तुझे चाहा, फिल्म छोटी सी मुलाकात डेडिकेट करना चाहते हैं आप अपनी बिलवड वाइफ के लिए, तो ढूंढ कर आपके लिए चलाएंगे जरूर रवि के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक प्यारा सा नगमा।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: मस्ती के नजारे हैं, संभाली कैसे खुद को। इट्स योर टाइम टू रेडियो मस्ती और आप प्यारे प्यारे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं एंड मैसेजेस पेंडिंग है पढ़ने के लिए। नो वरीज जी, अभी पढ़ लेते हैं आपके लिए। वी हैव संजना जी, जिन्होंने मांगा था किशोर जी का गाना चला जाता हूँ, आपके लिए हमने चला दिया जी। एंड वी हैव कुमार श्याम दाबीचंद जी, जो एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को सी साइड पहबे पर अपने दोस्तों के साथ, बलदेव, सुखदेव, रज्जू, धर्म जी। एंड नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल योर फ्रेंड्स प्लीज, जरूर। एंड वी हैव नेक्स्ट मैसेज, नमस्ते जी, अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए। वी हैव बृंदा बंगारू जी रोजबेल से, एंड आज है उनके दोस्त माला का बर्थडे और आप उन्हें विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। पूरे आर एम टू टीम की तरफ से भी आपको बड़ा सा हैप्पी बर्थडे विशेज। एंड वी हैव अब्दुल जी एंड सायरा बानू जी, जो कनेक्टेड है हमारे साथ सुबह से, हेलो टू यू। एंड वी हैव हमारे दोस्त ललिता जितन जी, और वो मांग रहे हैं गाना अपने सारे कलीग्स टीचर्स के लिए, मिमी, नीना, सलोनी, रवि, आश्ले, दिशा, परोशी, युष, अंजलि, मिशेल और खुद के लिए ललिता जी। और वो बोल रहे हैं कि वो आप सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो हो जाए आप सभी के नाम गाना आरएम2 वीडियो मस्ती पर।

एक बार नोटिस किया है, जैसे गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज कभी पुराने नहीं लगते, वैसे ही 70s, 80s और 90s के गाने भी कभी पुराने नहीं होते। हर जनरेशन इन्हें एंजॉय करती हैं, तो फ्राइज हाथ में हो या ना हो, रेट्रो रिदम का फ्लेवर ज़रूर बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं मनी साइन ऑफ करती हूँ। होप यू हैड ए ग्रेट ग्रेट आफ्टरनून। मेरे बाद आने वाली है परी आपको एंटरटेन करने के, तो यही RM2 रेडियो मस्ती पर स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड डे।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 2 baje hai. चले सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे याचना नमस्कार
6: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मधे मथुरा सेन का निधन 64 साल की उम्र में हो गया है अपने लंबे करियर की शुरुआत उन्होंने SMF के साथ की जिसके बाद वे रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर बने उन्होंने कई राष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा का भार संभाला उन्होंने डिविजनल कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में भी काम किया MBC शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है राष्ट्रसभा के कार्य आज शाम 3 बजे से जारी रखे जाएंगे आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित होगा इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जलेशोंगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है फुटबॉल की बात करते हैं वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया फ्रांस और मोरक्को के बीच स्कोर रहा फ्रांस 2 मोरक्को 0 इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो

0: गई, लेकिन विश्व कप में उनका सफर सराहनीय रहा। आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ। एमबीसी 11 पर इसका प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। विदेश समाचारों में स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग तेजी से फैल रही है। अभी तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए। 150 दमकल कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन तपती गर्मी और सूखे के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कौलीला शिमेघोनिये में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी सारा एयासिम पैदाशी नाम दुलो और जो सारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे फिरोज एयासिम के मकान कौलीला शिमेघोनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशल शिमेघोनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। मोसेलमा एमडीए सिया कॉन्स्टेंट सेंट पियर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रौपदी तिलोकी पैदाशी नाम बंधु और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके मकान मोसेलमा एमडीए सिया कॉन्स्टेंट सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। नंबर 491 एल्डर बेरी रोड दो पाइनवुड गार्डन वुटन में नंबर 491 एल्डर बेरी रोड टू पाइनवुड गार्डन वुटन में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री मॉडे मुतुरासेन जो दासेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और राजसू में पूर्व डीसीपी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज दिन के 3:15 बजे उनके मकान नंबर 491 एल्डरबेरी रोड टू पाइनवुड गार्डन वुटन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें मोहोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:15 PM। नंबर 72 लोहिकू वाली पिटू में 81 साल की 22 जो बाई शरीफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 3:30 बजे उनके मकान नंबर 72 लोहिकू वाली पीटो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए बेडीडाम कासी का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Must See.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
2: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स 2:18 आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। सनी देओल की फिल्म इक्का आज 10 जुलाई को OTT पर दस्तक दे चुकी है। इसमें अक्षय खन्ना भी अहम रोल में है और इक्का को लेकर नेटिजंस का क्या है रिएक्शन, चलिए ये जानते हैं। कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इक्का रिलीज हो गई है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर इस फ्राइडे यानी कि आज से स्ट्रीम हो रही है। सनी देओल इस फिल्म में अर्जुन मेहरा के नाम से एक किरदार निभा रहे हैं, वो एक वकील का की भूमिका निभा रहे हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्टेड इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी है। इक्का के जरिए सनी देओल का OTT में डेब्यू हुआ है और इस फिल्म पर सोशल मीडिया पर जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी खास है। फिल्म इक्का को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेटिजन्स काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दर्शक फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेजी है और इसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी, और वहीं जो दर्शक देख चुके हैं उसका वो पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और गुड रिव्यूज मिल रहे हैं इस फिल्म को लेकर। कुछ यूजर्स का दावा है कि अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में आती तो ब्लॉकबस्टर होती। किसी ने लिखा है, जस्ट फिनिश वॉचिंग इक्का और व्हाट अ सुपर फिल्म, दिस ऑनेस्टली डिजर्व्स अ थिएटरेटिकल रिलीज, और थिएटर में अगर ये रिलीज होती तो स्ट्रांगली वर्थ ऑफ माउथ पब्लिसिटी से कम 300 करोड़ पार करती और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होती। थिएट्रिकल जो रिलीज है उसकी मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी के लिए तो ये OTT पर रिलीज हो गई है एंड मिल रहे हैं अच्छे अच्छे रिस्पांस। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है, वॉचिंग इक्का नाउ आई रियली हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सनी देओल एंड अक्षय खन्ना। इक्का मूवी को लेकर लोगों का जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये तो हम जानते हैं दैट सनी देओल के फैंस अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी सारे हैं और आफ्टर धुरंधर अक्षय खन्ना की जो लाइकिंग है यानी कि उनके जो फैंस थे अब दुगना हो चुके हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग को हमेशा से लोग पसंद करते आए हैं, लेकिन धुरंधर में जो उन्होंने रोल किया है उसके बाद तो भाई रहमान डकैत हो या फिर कोई और कैरेक्टर, बस इनको लोगों को देखना है, बी इट OTT रिलीज या फिर बड़े पर्दे पर इन सिनेमा घर। लेकिन अभी के लिए तो जो भी फैंस है सनी देओल एंड अक्षय खन्ना के आप फॉलो कर सकते हैं इस फिल्म को ऑन OTT, रिलीज हो चुकी है इक्का ऑन दिस फ्राइडे।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: फ्रेंड्स, अभी के लिए एक और खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई। अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और चलिए जानते हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का क्या रिएक्शन है। अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर मिल रही शुरुआती रिएक्शन से साफ हो चुका है कि अजय देवगन की फिल्म कॉमेडी और पुरानी यादों और भरपूर मनोरंजन के साथ वापस लौट कर आई है। ट्विटर पर मिल रही अभी तक के रिएक्शंस को देखते हुए धमाल 4 दर्शकों को पसंद आ रही है और इसे एक मनोरंजक फैमिली फिल्म के रूप में सराहा जा रहा है और इसके साथ ही दर्शक धमाल 5 को मिले संकेत को लेकर भी काफी उत्सुक, काफी एक्साइटेड है। किसी ने लिखा है, धमाल 4 रिपोर्टेडली एंड्स विद अ टीज ऑफ धमाल 5 हिंटिंग दैट द कॉमेडी फ्रेंचाइजी इज ऑलरेडी गेटिंग अप फॉर इट्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर द लेटेस्ट फिल्म। और लोग हो गए हैं वेरी वेरी एक्साइटेड कि धमाल 4 के बाद अब जल्द ही धमाल 5 भी देखने को मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर किसी ने लिखा है दैट दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आई लिव फॉर, वन ऑफ द मेन रीजंस आई गो टू थिएटर इज टू वॉच सच फिल्म्स। एंड साथ ही कहते हैं, आई एम सो प्रिविलेज्ड दैट मुझे मौका मिला टू वॉच धमाल 4। ये है अभिजीत का कहना। और साथ ही साथ कहते हैं, मॉर्निंग स्टॉर्म ऑडियंस इज गोइंग क्रेजी टू वॉच धमाल 4 इन थिएटर्स आर पैक्ड विद लाफ्टर्स एंड रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग। सो ये तो रिस्पॉन्स आ रहा है इंडिया से, जहाँ पर लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। वैसे फ्रेंचाइजी ऐसी है, जब भी यानी कि फर्स्ट पार्ट जब से आया है तब से लोग इस फिल्म को देखकर एंटरटेन होते हुए आ रहे हैं। अब धमाल 4 भी लोगों को पसंद आ रही है। अभी के लिए ये तो है कुछ शुरुआती रिएक्शंस। अब देखना है कि आगे चलकर क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं और ये फिल्म लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आती है। अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जब कोई फिल्म ऐसी आती है जो आपको हंसने का मौका दे तो बस हंस लेना चाहिए। और कभी कभार होता है कि ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना है, कभी कभार कुछ फिल्मों में ज्यादा लॉजिक होता नहीं है, बस कॉमेडी होती है जिसे एंजॉय करना है। चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, दिमाग जो है वो लाइट फील करता है एंड 3 घंटों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको मिलता है। सो अभी के लिए तो यही रिव्यूज है धमाल 4 को लेकर। सो उसी फिल्म का ये गाना जो हो रहा है काफी पॉपुलर। Everyone who's connected, RM2 Radio Masti ke saath, main hu Pari and that's your Bombay Talkies. Garma garam Bollywood updates and some latest tracks from Dhamaal 4. Enjoy this one.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। राष्ट्रीय सभा के कार्य कुछ ही मिनटों में यानी दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन प्रणाली में सुधार पर आधारित होगा। इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुलेश होगा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा मैच बेल्जियम के खिलाफ। फीफा वर्ल्ड कप के इस क्वार्टर फाइनल्स के मैच का प्रसारण एमबीसी 11 पर किया जाएगा। इसके पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट्स विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। देखना न भूलिए रात 9:30 बजे से एमबीसी के 11th चैनल पर। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया। फ्रांस और मोरक्को के बीच स्कोर रहा 2-0। इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए। अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो गई लेकिन विश्व कप में उसका सफर सराहनीय रहा। विदेश स्तर पर चीन के दक्षिण पूर्वी शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए, कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गए। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज़ बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग

0: लगी करीब 240 लोग काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाएगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। सियाकोंस्टांस सेंपिया में 74 साल की 74 years old की श्रीमती द्रौपदी तिलुकी, श्रीमती द्रौपदी तिलुकी पैदाशी नाम बंधु और जो उमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके मकान मोसिलमा एमडीए सियाकोंस्टांस सेंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 years old के श्री दनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.
7: जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुद और रंगों की बरखा है खुशबू की।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: ये कौन आ गया स्टूडियो में?
2: देखो ऐसा होता है कि हम जहाँ पर बॉम्बे की बात होती है, बॉलीवुड की बात होती है, तो आए जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं विकास और परी के शो को हाईजैक तो नहीं, लेकिन एंट्री जरूर मैंने मार ली है।
3: कुछ खास तो होने वाला है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
2: यस यस यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बहुत कमाल का चला। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और RM2 की टीम यहाँ पे रुकने नहीं वाली, ये बात आपसे किया था, तो एक बार फिर से कुछ अलग करने के लिए हम बिल्कुल रेडी एंड सेट। अभी क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। हो सकता है कि जैसे मैंने एंट्री मारी परी के शो में, वैसे कोई और एंट्री मार ले हमारे शो में। हाँ, ये कैसे? रुको रुको, थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं। हेलो टेस्टिंग,
4: टेस्टिंग 1 2।
5: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
5: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
5: मस्ती करना,

0: उसको एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ.
0: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी,

0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स बात करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार और आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं और आपको बता दें इससे पहले दोनों ने आशिकी 2 और मलंग जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया है। अब दोनों एक साथ एक म्यूजिकल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म का डायरेक्शन मिलाप झवेरी करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार मिलाप झवेरी और आदित्य रॉय कपूर एक म्यूजिकल लव स्टोरी लेकर आ रही हैं। मिलाप झवेरी ने कहा कि आदित्य में प्यार और दर्द को पर्दे पर दिखाने का एक अनोखा टैलेंट है। इस फिल्म में उनका किरदार काफी गहरा और दमदार होगा जिसे दर्शक काफी पसंद करेंगे। सत्यमेव जयते और मर जावां जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मिलाप झवेरी ने बताया कि ये जो फिल्म है ये एक म्यूजिकल ड्रामा लव स्टोरी होने वाली है और इस फिल्म में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन, बेहतरीन डायलॉग्स और रोमांस देखने को मिलेगा और साथ में म्यूजिक ऐसा होगा जो सीधा दिल को छू लेगा। साथ ही आपको बता दें दैट इस फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन इसकी शूटिंग इसी साल की आखिर से शुरू होगी और ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। सो जो लोग रोमांटिक फिल्मों को पसंद करते हैं उनके लिए कुछ खास होने वाला है। वंस अगेन आदित्य रॉय कपूर का वो इंटेंस लुक और वो इंटेंस लव स्टोरी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और फिल्म का टाइटल क्या होगा और इस फिल्म में उनके ऑपोजिट कौन

तो चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस इस आवर में होने वाले हैं ऑन 5499-1294 आपकी गुड विशेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं फॉर योर लव्ड वन 3:40 एंड बी डाउन के कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए हम चला रहे हैं मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 3:48 and jaise humne vaada kiya tha, aapke messages, aapke dedications on 5499-12944. Thank you so much, aap itne pyar se apne messages, dedications hum tak pahunchaye. So ab waqt ho chala hai ki in messages ko hum pahunchaye aapke apno tak. Itne pyar se aap hamara saath de rahe hain. So well, Rekha ji hamare saath connected hai aap aur kehti hai gana for friends, Karyani aur saath mein hai Indira, Naushin, Shalini, abhi wo kaam kar rahe hain. Aap ghar par hai, chutti hai aapki, enjoy kar rahi hain, lekin remembering your friends, ye to hai asli friendship ki पहचान. सो गाना होगा आपकी सभी दोस्तों के नाम एंड फॉर यू रेखा जी, साथ देने के लिए शुक्रिया. साथ ही यहाँ पर एंजॉयिंग द प्रोग्राम गायत्री जी पोर्टलिस्ट से हमारा साथ दे रही हैं. सो गुड विशेस एंड लोड्स ऑफ लव आपके नाम भी. गुड आफ्टरनून विशेस लेकर आई हैं हमारे प्यारे से यलेश, कहते हैं एंजॉयिंग रेडियो मस्ती एंड RM2 के सभी गानों को एंजॉय करता हूँ और नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम. We also have Devisen Lal Mati se hamara saath de rahe hain aap. So warm welcome aapka Devisen. I do hope you're having a nice Friday. Aur abhi jo bacha hua Friday hai, ise bhi hum banayenge khas with some beautiful songs. Aur kehte hain in gaano ke liye bahut bahut shukriya. Weekend ka mahol to ho gaya hai set. Aur chaliye abhi ke liye aise hi kuch pyare gaane hum aapke liye chalate jayenge. Hamari pyari si Roshni jo aati hai Roshni lekar hamare is Radio Masti Radio Station par. So thank you so much Roshni for your love and for always sending so much of positivity and itna sara pyar. Gana hoga aapke naam. Kehte hain happy Friday sabhi ko. Veena Jagisa saath de rahi hain Belvi Mohel se. Ek gana sabhi sisters ke liye, sabhi brothers ke liye and for Radio Masti team. Thank you so much Veena ji. Gana hoga for all your loved ones and I am Avisha. Ye keh rahi hain Avisha aur dedicate karna chahti hain gana apne pure parivar ke naam. Okay Avisha, will have this beautiful gana for your family. Lalita Jeetan aa gayi hain ghar aur jud chuki hain Radio Masti ke saath. Yaad kar rahi hain parivar ko. Saroj, वीना कुमारी, गीता, ज्ञानती, वीना और दो भाई संजय और विजय, सभी जीतन परिवार के नाम. डेडिकेटिंग एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक. साथ ही यहाँ पर प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आप भी. सो गाना होगा आपके नाम. आ गए हैं घर काम से एंड एंजॉयिंग द शो. डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा. सो एक स्वीट सा गाना उनके नाम. एंड मीला है सिजियमल फॉरेस्ट साइड से और कहती है गाना हो जाए फॉर सिस्टर इन लॉ. उनके लिए बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेज. आज है उनका बर्थडे और उनके लिए बहुत सारी स्वीट स्वीट विशेज पूरे परिवार की ओर से. सो आज मामी मिमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं तो गुड विशेस ये है हमारी रेडियो मस्ती टीम की ओर से भी. साथ ही गाना होगा फॉर स्वीट अंजलि एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम काव्या. इतने सारे मैसेजेस, ओ माय गॉड. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना कमिंग अप फ्रॉम द फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी. एंजॉय दिस वन.

And well, friends, next track के साथ it's time for Pari to say goodbye. आ रही है हंसनी लेकर your Friday mashup. So उनका साथ दीजिए. आपसे मुलाकात होगी जल्द. तब तक के लिए take care, keep smiling, and enjoy your weekend.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 4 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. राष्ट्रसभा के कार्य आज दोपहर 3 बजे जारी रखे जा रहे हैं. आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन एक बार फिर पेंशन सुधार पर आधारित रहा. इस दस्तावेज के परीक्षण के लिए जिम्मेदार पेशेवरों के आयोग पर विपक्ष नेता जुलेश होगा. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से सवाल पूछे. वे जानना चाहते थे कि इस आयोग के गठन के लिए सदस्यों के चयन को लेकर कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. इस वक्त राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं. फुटबॉल की दुनिया में आज रात 11 बजे स्पेन खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ. एमबीसी 11 पर इसका प्रसारण किया जाएगा. इससे पहले रात 9:30 बजे से एमबीसी की ओर से स्पोर्ट विभाग द्वारा एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा. देखना न भूलिएगा रात 9:30 बजे से एमबीसी 11 पर. और फीफा वर्ल्ड कप के लिए कल रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला गया फ्रांस और मोरक्को के बीच. स्कोर रहा फ्रांस 2-0. इसी के साथ फ्रांस क्वालिफाई हो गया है सेमीफाइनल्स के लिए. अफ्रीका का प्रतिनिधित्व

0: पकड़ने वाली मोरक्को की टीम की आशाएं भले ही खत्म हो गईं, लेकिन विश्व कप में उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा। विदेशी समाचारों में चीन के दक्षिणी पूर्वी शहर जिनयांग में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 28 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। कई लोग इमारत की छत पर फंसे रह गए। ये इलाका चीन का शू कैपिटल कहलाता है, जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले 20% स्पोर्ट्स शूज बनाए जाते हैं। जिस वक्त आग लगी, करीब 240 लोग वहां काम कर रहे थे। अभी तक आग के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चलाई जाए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup, Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: फ्रेंड्स वॉर्म वेलकम 4:06 और आप सोच रहे हैं कि अभी तक परी की आवाज क्यों आ रही है बिकॉज हंसिनी विल बी जॉइनिंग इन शॉर्टली और तब तक के लिए तो कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके इस फ्राइडे आफ्टर

आफ्टरनून को एकदम मस्त आफ्टरनून बनाने के लिए. वैसे दोस्तों फ्राइडे की वाइब होती ही अलग है बिकॉज खुशबू लेकर आती है वीकेंड की, जहां पर आपको पता है कि बस आज के काम के बाद दो दिन आराम के मिलने वाले हैं टू रिचार्ज एंड रिफ्रेश. सो आपकी इस जर्नी को हम बनाने वाले हैं खास एंड स्पेशल बिकॉज बहुत सारे हमारे दोस्त काम खत्म करके ऑलरेडी घर की तरफ निकल चुके हैं. कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि घड़ी की टिक टिक कब इशारा करे कि हम ऑफिस से निकल पाए, और कुछ लोग ऑलरेडी घर पर हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सो जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, वी आर गोइंग टू हैव बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए बिकॉज ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर फ्राइडे मैशअप.

0: सवेल गुड म्यूजिक आपके लिए और फ्राइडे वाइब्स आप तक पहुंचा रहे हैं इन्हीं गानों के साथ। 4:20 कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
2: टक टक बॉलीवुड।

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: 4:30 PM, a warm welcome on Radio Musty, wishing you all a great afternoon. Special thank you to you, Pari. यहाँ पर हमारी परी थी and बेशक वो latest Bollywood गपशप वो थी हमारे संग और अभी शुरुआत हो गई है for आज का Friday Mashup Show. मैं हूँ आज हंसनी और बिल्कुल शुरुआत हो गई है for a दमदार musical journey जो set होने वाला है up till 7 PM. So जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है चलिए सभी का दिल से welcome है और काम से घर वापस आप जा रहे हो so wish you a safe journey back. यहाँ पे ट्रैफिक में ऑलरेडी फंस गए हैं क्या करें ये तो है रोजाना ये तो होता है लेकिन आज भी हमारा मैसेज तो यही रहेगा टू मेंटेन द पेशेंस क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक जो एक से बढ़कर एक हम चलाते रहेंगे और इस घंटे के दौरान यहाँ पे जुकों को भी होने वाला है अगर आपको जाना है कंसर्ट अभिजीत दा के कंसर्ट में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर यू स्टैंड अ चांस टू विन अ टिकट ये भी तो आने वाला है लेकिन अभी लेट मी वेलकम एवरीवन जहाँ पर भी साथ जारी है इट्स अ वार्म वेलकम इन आज का फ्राइडे मैशअप
1: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक इट्स अबाउट द फीलिंग
0: फ्राइडे मैशअप
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: Right, warm welcome again on Radio Musti. और यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग टू हैव द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. तो यहाँ पर अरविंद जो बिल्कुल तैयार है, चलिए उनका वार्म वेलकम. हाय अरविंद, विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम वेलकम इन फ्राइडे मैशअप.
4: गुड आफ्टरनून हंसनी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो सभी लोग बात कर रहे हैं फ्रांस के बारे में. फ्रांस ने कल मोरक्को को रोका नहीं, टोका भी, तो 2-0 से जीत. इस पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज का जो मैच होगा वो कम इंटरेस्टिंग नहीं होगा. इट्स स्पेन वर्सेस बेल्जियम. स्पेन की टीम, कैन यू इमेजिन, अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है. सो उसका जो गोलकीपर है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, और इस टीम को कौन हराएगा ये देखना जरूरी है. बेल्जियम की टीम में एक्सपीरियंस है, केविन डे ब्रुइन अपना शायद लास्ट वर्ल्ड कप खेलेगा, तो चिलेमैन से खिलाड़ी है, कूतुआ गोलकीपर. लेकिन स्पेन में कुछ है जो उसे अलग बना रहा है. दे आर नॉट प्लेइंग लाइक फ्लैम्बॉयंट फुटबॉल फ्रांस की तरह, बट रिजल्ट काउंट्स. तो ऐसे में इस टीम को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा. देखेंगे क्या होगा आगे चलकर इस मैच को लेकर. फिलहाल ये मैच आप लोग देख पाएंगे 11 बजे एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर और एमबीसी प्ले ऐप पर भी. इससे पहले 9:30 एक स्पेशल प्लाटो हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के सहयोगियों की ओर से, दैट विल बी ऑन रूट वेयर न्यूयॉर्क. तो स्पेन फेवरेट है यहाँ पर, लेकिन इस स्तर पर आकर कहते हैं कि कोई भी बब्बर शेर बन जाता है. लेट्स चेक आउट दी फिक्स्चर्स जो वीकेंड में होने वाले हैं. आज तो मैच है और कल सैटरडे, देखा जाए तो सैटरडे को मैच नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से. इस मैच में शायद मार्क ग्वे नहीं खेल पाएगा, वो घायल है हैमस्ट्रिंग इंजुरी को लेकर. और मंडे कितने बजे, सुबह 5 बजे अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड वाला मैच होगा. पहला सेमीफाइनल फ्रांस चला उसमें है पहले से ही. ये पहला सेमीफाइनल

0: होगा ऑन ट्यूसडे ये रात्रि के 11 बजे दूसरा सेमीफाइनल वेंसडे को ये भी 11 बजे और फाइनल आपको पता ही है संडे 19 जुलाई फ्राइडे संडे ये भी 11 बजे मैच खेला जाएगा सो ऑल सेट सभी लोग तैयार हैं टू गेट द लास्ट टिकट फॉर द वर्ल्ड कप इस बीच रेड कार्ड येलो कार्ड देखना है क्योंकि आगे चलकर ये क्या कहते हैं उसको सस्पेंशन के कारण बन सकती है वर्ल्ड कप के बारे में इतना टेनिस में भी काफी कुछ हो रहा है अभी सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं और इस समय फेरी और बेरेव के बीच मैच होगा और दूसरा सेमीफाइनल सीना और जोकोविच के बीच कल के खेले गए मैचों में मुचोवा ने गोफ को हराया नोस्कोवा की जीत हुई कोस्टुक पर सो नोस्कोवा और मुचोवा ये दोनों फाइनल खेलेंगी क्रिकेट की बात कर ले क्रिकेट जहां पर पहली बार के लिए लॉर्ड्स में महिला टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है और भारतीय टीम अभी बल्लेबाजी कर रही है 122 for 3 25 ओवर के बाद इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है कौन है अभी हमरप्रीत कौर ऑन 14 और स्मृति मानदाना वी 56 गुड गोइंग पहले दिन सेशन ये मैच जारी है सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड भूलेगा नहीं आज 11 बजे द सेकंड सेमीफाइनलिस्ट को टिकट दिया जाएगा कौन है वो स्पेन या बेल्जियम ये आज पता चलेगा और इससे पहले स्पेशल प्लेटो प्रोग्राम एट 9:30 भोजपुरी चैनल पर भी MBC3 पर 8 बजे आपको वर्ल्ड कप के मैचों के हाइलाइट्स देंगे और आने वाले मैचों की जो टीमें हैं उनके भी उनके बारे में भी जानकारियां देंगे सो कीप ऑन लिस्निंग और MBC TV के साथ भी जुड़े रहिए फॉर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप
1: थैंक यू सो मच अरविंद एंड यहां पे वी डू विश यू अ ग्रेट इवनिंग अहेड एंड अ जबरदस्त वीकेंड
0: ऑलराइट
1: थैंक यू वेरी मच
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Prix cassé l'eau la voix. La lumière moderne, prix choc. L'ordoise à ban prix qui pour faire ou même gagne pas quoi. Décoration pour la case, en dents, en déo. Sanitaire, levier, gazon artificiel. Enfin, c'est tout. Pour plus renseignements, check page Facebook Quality Déco.
4: RM2
5: Radio Musty
4: Feel the Musty

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: So back with the musical journey. It's a Friday mood. यहाँ पर बिल्कुल सब एडजस्ट बनाएंगे हमारे इस म्यूजिकल जर्नी को. तो यहाँ पर और क्या चाहिए जब सफर को बनाने के लिए आप लोग साथ निभा रहे हो. लेट अस ब्रिंग सम मोर एनर्जी. आखिरकार आ ही गया ना वो दिन जिसका पूरे हफ्ते इंतजार हम कर लेते हैं. यस, इट्स आवर फ्राइडे टाइम. और इशारा हुआ था ना यहाँ पर दर्शकों को भी आने वाला है. सो जस्ट गेट रेडी. क्या पता यहाँ पर आज लेडी लक है साथ साथ और आपके साथ वो जरूर देने वाली है. एंड यू कैन विन यहाँ पर जो टिकट आपको दिए जाएंगे. सो प्ले विद एमबीसी एंड विन. जीतने का चांस यहाँ पर आपको दिया जाएगा टू विन वन टिकट फॉर द गोल्डन 90s ईरा. किसको नहीं पसंद है 90s सॉन्ग्स, राइट? सो ये जो ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य बिल्कुल आ रहा है आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव इन कंसर्ट. ये जो बिग इवेंट है होने वाला है शनिवार 25th of July 2026 और कंसर्ट शुरू होगा आज फ्रॉम 7:30 PM जो लगेगा राइट एट SVICC पाई. स्टेप इन टू द वर्ल्ड जहां पर रहेंगे लॉट्स ऑफ मेमोरीज नॉस्टैल्जिया एंड विल बी हियर टू रिलीव द अनफॉरगेटेबल आवाज दैट डिफाइंड बॉलीवुड गोल्डन ईरा. तो आप लोगों को आना है टू एंजॉय एन इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज कुछ लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर मैजिकल म्यूजिक. और जो टिकट्स है वो तो बिल्कुल द प्राइस एक्चुअली स्टार्ट एट 850 रुपीज एंड अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेसा उतायो. सो ये जो यादगार कंसर्ट होने वाला है डोंट मिस द चांस टू बी पार्ट. फॉर रिजर्वेशन यू कैन कॉल ऑन द हॉटलाइन 466-9999. ये जो डिटेल्स है हमने आपको बता दिया है. बस आपको यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने रखा है बस सवाल आपको ढूंढना है. और अगर बाय चांस आपके पास सही जवाब है सो बिल्कुल यू स्टैंड द चांस जीतने के लिए एंड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट 90s कंसर्ट जो होने वाला है 25th of July को विद अभिजीत भट्टाचार्य. सो अगला गाना दैट विल बी इन हिज ग्रेट वॉइस. और जो फीमेल आवाज आने वाली है बस आपको पहचाना है और हमें देना पड़ेगा द सही जवाब द राइट आंसर. सो पूरा नाम पता ये सब प्लीज लिखे ऑन 5499-1294 ताकि आप इन हो जाए राइट फॉर द लकी जो. सो हंसनी इज हियर पूरे टीम के साथ. वी डू विश यू गुड लक.

0: Friday mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: That was a great one. The 90s का एक बहुत ही खास यादगार मेमोरी रहा ऑन रेडियो मस्ती. सो फिलहाल एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द सॉन्ग. अभिजीत दा की आवाज को हमने खूब एंजॉय किया है, राइट? लेकिन साथ में जो फीमेल आवाज गूंज रही थी, वो आवाज किसकी थी? एक्चुअली यही तो हमारा सवाल था, एंड कई सही जवाब मिले हैं यहाँ पर. वाव, थैंक यू वेरी वेरी मच आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए. और आपको पता है ना, जो मुश्किल काम होता है वो एक विनर का नाम सेलेक्ट करना, राइट? सब आजेज इस बात को मानेंगे कि कितनी मुश्किल होती है ना, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो करण कर लेता है हमारे लिए. इट्स आवर लकी ड्रॉ. और यहाँ पर बस मुश्किल काम हो गया है. और इससे पहले कि हम अनाउंस करें लकी विनर का नाम, लेट मी टेल यू द राइट आंसर. जो गा रही थी शी इज अनुराधा श्रीराम. बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे है, इसके लिए थैंक यू. तो कहना चाहेंगे आपने कुछ टाइम निकाला है और इस गेम में आपने भाग लिया है. सो अभी टाइम टू अनाउंस द विनर. उनका नाम क्या है जी? लेट अस गो एंड फाइंड आउट.

सो यहाँ पे कौन जाएगा या फिर कौन जाएगी टू द कंसर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य जो होने वाला है शनिवार 25 ऑफ जुलाई को. शुरू होगा फ्रॉम 7:30 PM लाइव एट SBICC पर. और यहाँ पर लकी डो द्वारा He is Arvind Ramit from Ukule. Congratulations to you, Arvind. Bravo to you. Aapki jeet ho gayi hai aur aap le ja rahe ho. One ticket being offered to you. Of course, through Radio Masti, yahan par ye shoko kuch tha. Aapki jeet ho gayi hai. और इशारा है कि आपका जो टिकट है इज रेडी टू बी कलेक्टेड एट MBC. आपको आना है, आपको बोलना नहीं, आपका जो आईडी कार्ड है ना आपको साथ लेकर आना है MBC. एंड यू टेक योर टिकट और बिल्कुल आपको जाना है फॉर द बिग बिग कंसर्ट जो अभिजीत दा हमें देने वाले हैं हम सब 90s के चाहने वालों के लिए. राइट, सो ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो मस्ती. यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द न्यूज़. यहाँ पर श्रीना इज रेडी इन द स्टूडियो. हाय श्रीना, अभी कुछ ही देर बाद हम लेकर आएंगे the news.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Friday Masher RM2 Radio Musti.
3: क्या बात है, यहाँ पर आज रेडियो डिपार्टमेंट आपको दे रही है लॉट्स ऑफ ग्रेट चांसेस और जिससे आपने सुना है यहाँ पर प्रोमो जो आप लोगों के लिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अगर आपके पास वो स्पेशल टैलेंट है यहाँ पर आरजे का काम रेडियो पर बात करना, ये एक खास सपना है, तो ये जो सपना है पूरा हो सकता है। यस, वी कैन मेक इट बिकम ट्रू। ये जो रेडियो डिपार्टमेंट जो है लेकर आ रहा है वो स्पेशल चांस। तो जैसे विदिता और विकास ने कहा है टू फॉलो द प्रोसीजर्स और बेशक अपना जो वीडियो है एकदम झकास वाला बना लीजिए एंड सेंड अस बिफोर द डेडलाइन और क्या पता ये जो आपका सपना है वो बिल्कुल सफल हो जाए, साकार हो जाए। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या पता आप भी यहाँ पर बन जाए और जी हमारे साथ बिल्कुल काम हो जाए एकदम टक। तो यहाँ पर वेलकमिंग यू ऑन रेडियो मस्ती, दिस इज आवर फ्राइडे मैशअप। सो हालचाल कैसा है? फाइनली इट्स एन ऑफ कि यहाँ पर वीकेंड बिल्कुल दस्तक दे रहा है। हफ्ते भर के लिए कितना सारा काम होता है ना, तो यहाँ पर तनाव से बिल्कुल दूर, स्ट्रेस को हम बस पीछे छोड़ेंगे। लेट गो ऑल द स्ट्रेस और हम तो कहेंगे जी चिंता छोड़िए, चिंता को चिता दीजिए एंड बी विद अस म्यूजिकल। आप हो जाएंगे एकदम मदमस्त गानों के साथ। और जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगे हुए है प्लीज़ मेंटेन योर पेशेंस, धैर्य संयम को आप बनाए रखें प्लीज़। ये जो बैलेंस है हम लेकर आएंगे म्यूजिकल शो में, दिस इज आवर फ्राइडे। तो यहाँ पर आज का स्पेशल मंत्र हम आपको दे देते हैं कम टेंशन, ज्यादा मुस्कान और यहाँ पर बिल्कुल और क्या चाहिए टू मेक इट फन और भी जबरदस्त बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सुनी का साथ है। रेडी होप कि जो आज का हमारा कलेक्शन है, जो गाने हम लेकर आ रहे हैं ना, आपको पसंद आ रही है। और टू सेलिब्रेट योर स्पेशल फ्राइडे व्हाई नॉट, मे बी आज की तारीख बहुत ही खास है और शेयर करने से और भी धमाकेदार हो जाएगा। सो इसका इंतजार हम करने वाले हैं आपके मैसेजेस। एक छोटा सा मैसेज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, बात बन जाएगी। ऑन 5499-1294 पर हम करेंगे आप लोगों का इंतजार।
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
4: Friday Mashup. Friday Mashup.
2: RM2. Radio Musti. In the mix.

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: Well, वैसे जॉन को पकड़ना न सिर्फ नामुमकिन है, यहाँ पे मुश्किल है, नामुमकिन है. ये तो डॉन के चक्कर में हम मैसेजेस को पढ़ना भूल जाएंगे, राइट? सो डॉन जी यहाँ पर आ पाए इसके लिए थैंक यू तो कहना चाहेंगे. अभी के लिए टाइम फॉर सम मैसेजेस, राइट? 5491294 पर चलिए पता लगाते हैं यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स को जहाँ पर वे साधे रहे हैं. हेलो टू एवरीवन, नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर करुणा के लिए जो न्यू ग्रोव से है. To all Gopichand families and for all your dear ones as well, thank you for listening and appreciating the song collection. Yahan par Tilak Parivar ka welcome hai from Plenty Papai. I really hope ki sab theek hai ji. Please, mere liye ek gana ho jai. I'm in the kitchen, rocking in the show. Yahan par rocking the music in Friday Mashup. Thank you very much. And getting rid yahan par messages on 5491294. Yahan par Savi ka message aya hai. Aap to ho from QPIP. Aur मौसम की बात करें तो इट्स फ्रीजिंग, लेकिन गानों के साथ अच्छा लग रहा है. गोइंग बैक होम और काफ़ी थकी हुई थी काम पर, लेकिन थैंक्स टू म्यूजिक आप कुछ एंजॉय कर रही हो तो ऑफकोर्स हो जाएगा. नेक्स्ट वन आपके लिए टू ब्रिंग योर सम मोर एनर्जी. सफ़र को ऐसे ही बना लीजिए खुशहाल. लेट अस ब्रिंग सम मोर एनर्जी. और ड्राइव टाइम करते समय प्लीज़ जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखें. एक कॉल इंतज़ार कर सकती है ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं. सो बेटर कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट. और यहाँ पर बिल्कुल जो मजेदार गाने हैं हम लेकर आएंगे ताकि जो ड्राइव है वो कुछ और स्पेशल हो जाए. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट. यहाँ पर रफ्तार के साथ तो हम म्यूजिक को चलाते रहेंगे, लेकिन रास्ते पर नो रफ्तार, आराम से प्लीज़ गाड़ी चलाएं. मूड यहाँ पर एकदम मस्त बनाने के लिए वी हैव गॉट जबरदस्त म्यूजिक. सफ़र को और भी दिलचस्प हम बनाएंगे, आप लोगों के आने से कुछ और खास बन जाता है. सो अगर आप भी कुछ भेजना चाहेंगे मैसेजेस तो कोई बात नहीं, अभी भी इंतजार हो रहा है ऑन 5491294. सो इसी ड्राइव टाइम को और भी जबरदस्त बनाने के लिए हंसनी है जो आपके साथ जुड़े रहेगी अब टिल 7 PM.
1: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक, इट्स अबाउट द फीलिंग.
0: फ्राइडे मैशअप.

0: to
1: Radio Musty.
2: Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Toga doublé, Toga doublé. Ça, samedi 11 juillet, Multiwin 5 Périvini dans Tirage Loto et Cossi Loto Plus. Qui était sa Multiwin 5? Quand on gagne 5 bons numéros dans Tirage Loto ou bien Loto Plus, ça samedi là, ou gain multiplié par des lits doublés. Avec Multiwin 5, Asté ou Tap Double.
3: Ceci est un communiqué de l'Autothèque. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty. RM2
4: Radio Musty.
1: Feel the Musty.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
4: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musty.
5: We continue on Radio Musty for our Friday Mashup. यहाँ पर हंसनी है जो आपके साथ दे रही है. And यहाँ पर सर्दियों के इस मौसम में यहाँ पर क्या कुछ पहना जाए, कुछ confusion हो रहा है. So let us make it easy. सर्दी में winter में stylish दिखना है ना, तो layering अपना लीजिए. एक हल्की t-shirt, उसके ऊपर sweater और फिर jacket. आराम भी, style भी.

0: और एकदम स्टाइलिश आप दिख जाओगे। सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं बल्कि रंगों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेट्स से यू कैन ट्राई नेवी ब्लू, मरून, ग्रे, मस्टर्ड जैसे कलर्स जो है ना आपके लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर्दियों में क्या कुछ पहना जाए, सर्दियों में एक खूबसूरत शॉल हाँ आपके लुक को पल भर के लिए और भी एलिगेंट बना सकती है। सो अगर आसपास है शॉल सो मेक इट अवेलेबल, आप ले लीजिए आज आपके साथ। अगर आप का एक डिनर होने वाला है, एक गेट टुगेदर होने वाला है और सर्दी की वजह से यू कैन टेक योर शॉल। इससे साड़ी सूट या फिर कुर्ती किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल करते हैं एंड पाइए बिल्कुल उनके साथ एक क्लासिक विंटर लुक। अगर ठंड से बचना है ना तो आपको यहाँ पर स्टाइल को बनाना पड़ेगा, आपको स्टाइल भी बनाए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर विंटर का जो वार्डरोब है उनमें से एक सॉलिड या फिर कश्मीरी डिज़ाइन वाली शॉल निकाल लीजिए और यहाँ पर आज आप पहनेंगे तो आपका जो लुक है वो कुछ ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा ना। सो डू ट्राई इट एंड मेक इट मोर एलिगेंट आज।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती फील।

0: Masher.
1: RM2, Radio Musti.
2: That was a great one. Tu chase buddy hai master. Yahan pe jo master hai, wo to hamare gaane hai na. Right, stay well tuned for Friday Mashup. Time for some messages now. Pyar se jahan par aapne kuch likha hai aur dil se hum padhenge. Namaste to Jill Arsha from Vakwa. Kaisi ho ji? Aaj behna Vedini ka janmdin hai. Wishing her a very happy birthday. Good wishes coming from Bhai Rachit. Choti si niece hai Jeshti, jo aaj ek saal ki hui hai. Yani ki tino ke tino aaj janmdin manaye ja rahi hai. Aaj unke yahan celebration sajari hai. And we have got the wishes coming from Kedu families, Sukun, Vyapuri and Ramdhuni Parivar. Sab shamil hoi hai to wish Vedini, Rachit Bhai and Jeshti a very happy wala birthday. Lots of good wishes coming from all our team. Hello to Swinal, Kesi Hoji. Welcome on Radio Musti. Welcome in Friday Mashup. Yahan par gana for Bhai Shravan ke liye, for Bhabi Kriti, for Abhinav Kiyan Navya, aur sabhi Tilak Parivar ke liye, also to Anti Shramsaran and to Bhai Gurshan as well. Thank you, Ji. Yahan par message to pahunch gaya hai, aur jahan par hamare friends sajude hue hain, bas ek gana ho jaye on your behalf unke liye. Namaste, Didi Hansani. Namaste to you. अच्छा सा प्रोग्राम सजाती हुई बस आपके साथ है ऑन रेडियो मस्ती. थैंक यू जी. एंड गाना जाएगा फॉर ऑल द परिवार के लिए जो सोनान से है. थैंक यू यलेश फॉर सेंडिंग योर लव एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर आज का फ्राइडे मैशअप. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ड्राइव करते समय साथ निभाते हैं और कई लोग काम करते समय बस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा हायर कर लेते हैं. सो वी डेडिकेट दिस वन फॉर कुणाल जगह सिंह के लिए जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है राइट अवे फ्रॉम वर्क. तो कुराश उनको और यहाँ पर जो गुड म्यूजिक है वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए एंड फॉर एवरीवन जो उनको जानते हैं. राइट, लेट अस बी टुगेदर टू स्पेंड दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग टुगेदर. यहाँ पर हंसनी का साथ अप टिल 7 PM. दिस इज आवर फ्राइडे मैशअप.

0: Actu.
1: Radio Musty.
2: Comment vous avez dit? Pose vite, c'est le là. Marie longue, ça moi là.
3: Maxiveuse mille, c'est gars. Bon goût.
4: Petit prix. Le plan parfait. Venez découvrir les Maxiveuse Mills car il y en a pour tous les goûts à partir de 190 roupies. La qualité à prix mini.
5: It's Maxiveuse time. Mon content, mon pose content.
4: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
6: Goodlands Paris. Domino's Pizza fait ouvert le samedi 11 juillet à Goodlands, cœur de ville. Au programme, des goodies, de l'animation, pizza large et médium à 50% discount. Et les 50 premières personnes pour qu'elles fassent une pizza en cadeau.
7: Damn. Mmh, nose.
0: RM2
1: Radio Musty.
8: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup.
1: RM2 Radio Musty in the mix.
9: Right, bringing you only the best of music. This is Radio Musty. यहाँ पर म्यूजिक के साथ थोड़ी सी मस्ती हम करेंगे आज. Double the dose, क्योंकि आज तो है कौन सा दिन? Friday, yes. And we are here आपके साथ celebrate करने के लिए. दोस्तों को बस याद करते हुए, we have this one for all my lovely friends जो यहाँ पर strongly connected है. A big hello to Sadhana ji, pranam to you and welcome. And तैयारियाँ हो रही है, yes, for the big, big rendezvous जो होने वाला है, of course. So जाने से पहले एक गाना तो बनता है ना आपके लिए और आपके स्वीट परिवार के लिए जो स्टेनवे रोजर्स से है एंड फॉर एवरीवन जो आपको जानते हैं. हैव अ ग्रेट टाइम एंड ये खास गाना है आपके लिए हमारी तरफ से.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
1: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: Yes, so keep listening to Radio Masti. यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ने वाले हैं समाचार बुलेटिन की ओर, और इसके बाद बिल्कुल हम मिलने वाले हैं फॉर द थर्ड आवर।
2: RM2 Radio Masti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Masti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good evening, everyone. Check your time. शाम के ठीक 6 बजे है.

0: इस सायंकालीन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमेटी की अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, न ही वास्तव में और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। 2025 की चीनी की फसल के लिए खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपए प्रति टन तय। मॉर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज्यादा उत्पादन माना जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हाल आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से 2 की उम्र 16 साल से कम। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं। विदेश में दक्षिण पूर्वी चीन में जूतों के एक कारखाने में भीषण आग, कम से कम 28 लोगों की मौत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने का आदेश दिया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष या सदस्यों के कामकाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, ना ही वास्तव में और ना अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रसभा में विपक्ष नेता के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये बात कही। उन्होंने एक बार फिर इन पेशेवरों के लिए अपना अटूट समर्थन दोहराया। उनको सुनते हैं।
1: I'm informed that Quantum Insurance Limited is licensed to transact only in short-term general insurance. This is not a subject related to pension reform. As such, there is no conflict of interest, actual or perceived, for serving as chairperson of the Commission of Experts. When we returned back into government, we could not leave the NPF and the NSF, which have together more than 200 billion rupees of assets, without professional advice regarding investment. That is why the Minister of Finance proceeded with a tender exercise for investment advisory services, and Actuarix was awarded the contract on the 28th of April 2026 for an initial period of 1 year, renewable for a further period of 1 year for an amount of 3.8 million rupees. There were, I should add, 5 bidders that participated in the tender exercise. Being an advisor to the investment committee on investment does not constitute a conflict of interest in advising on pension reform. It is ironical that the sole representative of a party which has the unenviable record of having introduced the concept of institutional nepotism and turned Mauritius into a model of abject cronyism is now asking questions about conflict of interest, ethics and good governance. I'm tempted to ask him, where was he as the minister when Mr. Avinash Gopi or Mr. Sattar Haji Abdullah and one of his own colleagues, Mr. Kavi Ramanu, were engaged in blatant acts of conflict of interest?
2: Should he say the right to put my question when he's asking where I was? I'm here.
1: Madam Speaker, it's actual facts. I'm talking about facts. Where was the MSM when the institutions like the Bank of Mauritius and the State Bank were deeply involved in cases of conflict of interest and incestuous relationships? Vous savez, Madame la Présidente, ces fossoyeurs de la bonne gouvernance veulent aujourd'hui se faire refaire une virginité by attacking professionals who are recognized as such both nationally and internationally. We must ask ourselves, Madam Speaker, if this is yet not another attempt to deviate attention from the decade of corrupt and despicable practices that sullied the reputation of our country on the international front. Or could it be simply a case of selective political amnesia or trying to challenge the collective intelligence of this nation? Madam Speaker, the systemic attacks on the Commission of Experts smacks of demagogy and pettiness. The campaign of innuendos and hitting below the belt demonstrates the level of cheap politics that some people in the opposition are willing to stoop to present themselves as the neo-paragons of good governance, transparency and moral authority of this country. These people do not seem to realize that this vile campaign is belittling top-notch professionals who we badly need for this country to take it to a new level of development. I once again, Madam Speaker, want to restate my unflinching support to such professionals.
0: 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखाने के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपए प्रति टन तय की गई है। नॉर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज़्यादा उत्पादन माना जा रहा है। पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो लोग भर्ती होने की इच्छा रखते हैं वे सोमवार 13 जुलाई तक अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। सिलेक्शन के नियमों को में हल्की ढील दी गई है, खासकर फिजिकल और अकादेमिक आवश्यकताओं के मामले में। इसके साथ ही शुरुआती वेतन भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए आज हम पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग पर एक रिपोर्ट आपको पेश कराने जा रहे हैं। हमारी एक टीम ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया।
3: पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस ट्रेनियों की सुबह 5 बजे शुरू होती हैं और लगभग 17 घंटे बाद यानी रात के 10 बजे जाकर समाप्त होती हैं। ये उनकी रोज की जिंदगी है। हफ्ते में 5 दिन शारीरिक ट्रेनिंग, टैक्टिकल एक्सरसाइजेस और थ्योरी क्लासेस के बीच उनका दिन काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहता है। वे पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लेते हैं। ट्रेनी वुमन पुलिस कांस्टेबल बीबी स्वालिहा हिम्मत कहती हैं, मैंने ये पेशा इसलिए चुना ताकि मैं लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकूं। ट्रेनिंग के पहले 6 महीने पूरे होने के बाद उनको विभिन्न विशेष इकाइयों में रोटेशन पर भेजा जाता है, जिनमें स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड शामिल हैं। जकारिया तूफान कहते हैं, सबसे पहले स्पेशल मोबाइल फोर्स में मैंने ट्रेनिंग पाई और अब बोबासे के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में देश के कानून पर जानकारी पा रहा हूँ। यहाँ कई लीडरशिप स्किल्स सीखे हैं, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ट्रेनिंग कई चरणों में होती है। पहला चरण 9 महीने तक चलता है, जिसमें भर्ती जवान थ्योरी की पढ़ाई और मैदान में व्यावहारिक प्रशिक्षण के बीच अदला बदली करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एसपी सदानंद टोकोगी कहते हैं, इस प्रशिक्षण के बाद वे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। 1 महीने के दौरान वे काम की वास्तविकता को जानते हैं, शिफ्ट पर काम करते हैं और ट्रेनिंग का समापन एक अंतिम परीक्षा से होता है। इस साल 367 लोगों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रवेश लिया है, जिनमें 117 महिलाएं और 112 रोडवेज से हैं। उम्मीदवारों के चयन के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। दिन ब दिन इनकी संख्या कम हो रही है।

साथी नए पुलिस भर्ती अभियान के लिए आवेदन की भी मांग की गई है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। अन्य बदलावों में शारीरिक मानकों में ढील दी गई है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई अब 1.68 मीटर कर दी गई है और महिलाओं के लिए 1.61 मीटर। एक और अन्य बदलाव ये है कि अब शरीर के किसी

0: रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के पास अपना आवेदन भेजने के लिए सोमवार 13 जुलाई तक का समय है।
1: चीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय की अहम भूमिका है और लोग दिन भर चाय का सेवन करते हैं। ये एक आम उपभोग से बढ़कर एक रीति रिवाज की तरह है। चीन से चाय की कला के कुछ माहिर मॉरिशस आए हुए थे। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में उन्होंने मॉरिशनों के बीच इस संस्कृति की विशेषताएँ बाँटी। सुनिए।
2: चाय समारोह यानी टी सेरेमनी की शुरुआत चीन में सोंग वंश के दौरान आज से 1000 साल से भी ज्यादा समय पहले हुई थी। इस समारोह की बारीकियों में निपुणता हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि सबसे बेहतरीन सुगंध और स्वाद निकाला जा सके। इसके लिए पानी के तापमान, चाय को पकने के समय और चाय डालने की विधि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिर्फ एक पेय पदार्थ से कहीं बढ़कर चाय ज्ञान, सम्मान और सामंजस्य का प्रतीक है। चाय बनाने की कला की एम्बेसडर वांगफेई कहती हैं, चाय बनाने के लिए तैयारी और इसके सेवन के कई लाभ होते हैं। जो व्यक्ति चाय बनाता है उसे बहुत ध्यान देना चाहिए और इसका सेवन करने वाले को भी। चीन की एक और प्रसिद्ध मंच कला है मास्क बदलने की कला। सिचुआन के ओपेरा आर्टिस्ट वांग पानपान कहते हैं, मास्क बदलने का मंचन चाय कला से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। हर एक मास्क व्यक्ति की विभिन्न भावनाओं को दर्शाता है। ये खुशहाली फैलाने का एक अच्छा साधन भी है। इस समारोह में उपस्थित चीन की राजदूत वांग शिफांग ने चाय के प्रति मॉरिशस और चीन के प्रेम को उजागर किया। इस शाम का एक और मुख्य आकर्षण था सिचुआन के कलाकारों का प्रदर्शन, जिन्होंने चाय की फसल के समय चाय उगाने वाले किसानों की खुशी

0: मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर तीन पीड़ितों में से लगभग दो की उम्र 16 साल के कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं, इसीलिए सभी का सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। 1.5 साल तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के बाद लिनियो मोरिस फिर से वापसी कर रहा है। पार्टी के नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू करने की घोषणा करने के लिए इस शुक्रवार को एबेन के निसीपाक होटल में प्रेस से मुलाकात की। इस दौरान देश के हालत पर भी चर्चा की गई। और स्थानीय स्तर पर ही आज लगे प्रेस सम्मेलन के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने पेंशन प्रणाली में सुधार पर ज़्यादा स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र वालों का पेंशन बरकरार रखा जा रहा है, उसे रोकने का सवाल खड़ा नहीं होता। 60 साल के हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। इसके अलावा मॉरिशस पेंशन फंड भी वापस कायम किया जा रहा है, जिसे अब MPF 2.0 से जाना जाएगा। विदेश की खबरों में दक्षिण पूर्वी चीन में जूते के एक कारखाने में भीषण आग लग गई। कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है। आग पर काबू करने के लिए 500 से ज्यादा दमकल कर्मी तैनात हुए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे के पीछे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के आदेश दिए हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: चीन के दक्षिण पूर्वी इलाके में जूते के कारखाने में आग लगने से कम 28 लोग मारे गए। फुजियान प्रदेश में जिनजियांग के हुईटेंग कारखाने में ये हादसा पेश आया। अधिकारियों के मुताबिक दिन के करीब 12 बजे आग लगी। राहत कार्रवाई के लिए 500 से अधिक दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी साधन तैनात कर दिए। साथ में हादसे के कारणों का भी पता लगाने के लिए आदेश दिए गए। कई घंटों के अथक प्रयासों के बाद

0: आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त स्थल पर 237 कामगार थे और अन्य दो लोग। कुल 213 लोगों को हटाया गया। इनमें से दो की मृत्यु अस्पताल में हुई, जबकि लापता 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिससे कि मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई। कंपनी के उच्चाधिकारी तथा इस मामले में संलग्न अन्य लोगों के साथ पूछताछ की गई और कंपनी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अधिकारियों की ओर से दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के वास्ते जांच शुरू की गई।
1: फुटबॉल की बात करते हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच का मैच आज रात 11 बजे से शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर होगा और स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ से इससे पूर्व रात 9:30 बजे से एक विशेष प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: स्पेन की टीम ने अब तक कमाल किया है, ग्रुप एच में पहला स्थान लिया, ये तो मामूली बात थी, लेकिन अभी तक एक गोल भी किसी ने उस पर स्कोर नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड है। स्पेन ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था बेस्ट ऑफ 16 में और पोर्टुगल को एलिमिनेट किया था 1-0 से। ये लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते में बेल्जियम होगा और गोलकीपर जो है उनाई साइमन अभी तक रिकॉर्ड बना चुका है और वो इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा। 609 मिनट हो गए जब से उस पर गोल स्कोर नहीं किया गया है इस वर्ल्ड कप में, तो अब देखना है लाहौरा कितना आगे जाएगा। और बेल्जियम की टीम जो है इसमें अनुभवी खिलाड़ी है, अपने ग्रुप में ग्रुप जी में पहले स्थान पर आए थे और जाबलो रूज सेनेगल को 3-2 से हरा पाए थे और अंतिम मैच में यूएसए को हरा पाए थे 4-1 से। धीरे धीरे इस टीम ने रफ्तार पकड़ा है और अब रुई गार्सिया की टीम में जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको दिखाना है गोल्डन जेनरेशन, ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता, कुछ साबित करके दिखाएंगे कि ये जेनरेशन वर्ल्ड कप जीत सकता है। इसीलिए लाहौरा के लिए आसान मैच नहीं होगा। ये मैच आज 11 बजे खेला जाएगा। इससे पहले एमबीसी स्पोर्ट्स डेस्क की ओर से एक स्पेशल प्रोग्राम ऑन रूट वेयर न्यूयॉर्क।
1: फ्रांस के रेगुलर टाइम में मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। मैच का फाइनल स्कोर 2-0 रहा। सेकंड हाफ में किलियान एम्बापे और उस्माने देम्बेले ने मोरक्को के दफे के को भेद कर फ्रेंच टीम के लिए लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। जरा विस्तार से बोलते हैं।
2: बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा पेनाल्टी मिस करना अब आम बात हो गई है। मेसी ने पेनाल्टी मिस की और यहाँ पर किलियान एम्बापे भी पेनाल्टी स्कोर करने में नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद जो ये लोग करते हैं अपनी टीम को जितवाते हैं। किलियान एम्बापे फ्रांस का टॉप स्कोरर सेकंड हाफ में आकर अपना पहला गोल स्कोर करता है। बुनू जो गोलकीपर है उसने बहुत कोशिश की, इस वक्त तक उसने अपनी टीम को संभाल के रखा था, लेकिन कितना बच पाता एम्बापे के सामने।
3: Jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection. Et voilà, je suis très heureux de cette qualification. Alors on savait que le Maroc, c'était un match difficile. On est avec des joueurs de qualité, mais on est resté concentré dans ce match. Même après le penalty loupé, on a voulu rester concentré. Voilà, on est heureux de cette qualification.
2: Mbappé qui est ce goal que bad, thori der bad, Dembélé goal score karta hai. ये एम्बापे के पास पर एम्बापे के असिस्ट काफी है, गोल्डन बूट के लिए ये काम आएगा क्योंकि वो अभी लियोनेल मेसी के बराबर है 8 गोल के साथ।
4: On est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin et on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu'on a passé, mais on est prêt à tout affronter et on va tranquillement récupérer.
2: वर्ल्ड कप के फाइनल्स में डिडिये देशां 20 मैच जीत चुका है ले ब्लू के साथ 25 मैचों में और इस बार कोच के रूप में चैंपियन बनना चाहेगा।
5: C'est trois consécutives, donc déjà ça c'est bien, mais ça semble logique et naturel, mais il faut y arriver. Ouais, évidemment, j'ai des super joueurs, autrement on n'arrive pas là, mais c'est bien, c'était compliqué parce que aujourd'hui, en rentrant le penalty, les occasions qu'on met pas, mais bon, quand c'est Kylian. Pas de souci, il doute jamais, même s'il a eu une occasion avant de marquer aussi. Donc, c'est super, on est là où on voulait être.
2: लेकिन आगे चलकर उसके रास्ते में कौन होगा, स्पेन या बेल्जियम, ये आज रात को पता चलेगा।

चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर कल दोपहर बाद से। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:44 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर डोमिनिक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रायरोड एनएस फ्लोरान में तिरसठ साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रायरोड एनएस फ्लोरान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। कॉम्बे लैंड ग्लैन पॉगवाकवा में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री अनंद हरिलाल जो विदान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे रागेश अनंद के मकान कॉम्बे लैंड ग्लैन पॉगवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। न्यू रोड होशनुआ में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज हरलोल जो धर्म के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी माला हलुल के मकान न्यू रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। कालीमाई पालमाकाथोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री जसोनाथ भैरू जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सीएनटी के पूर्व ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को दिन के एक बजे उनके मकान कालीमाई पालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन संडे एट 1 PM। Avenue de l'Espérance Piton में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति देवी शंभू पैदाशी नाम बद्री और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे रामचंद शंभू के मकान Avenue de l'Espérance Piton से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। क्रिमेशन रोड होशनुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिमन्यु इमामजी जो राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके रिश्तेदार अनिल कपूर पादियाची के मकान क्रिमेशन रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम

संस्कार के लिए लावांचुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। वाल्टोमो ताइलोंग में 62 साल के 62 years old के श्री सत्यानंद इत्वाहा जो अजीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी बबीता इत्वाहा के मकान वाल्टोमो ताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमो शांतियागोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। मोसेलमान बुले रूज फ्लैक में विनर्स सुपरमार्केट के पीछे उनहत्तर साल के 69 years old के श्री करण गजाधर जो सुरतम और पेपे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, पहले गांधी रोड लाल माटी रहा करते थे और पूर्व कपुरल थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान मोसेलमा बुले रूज फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। नंबर नौ मोसेलमा माउंट पॉम्पलमुस में 80 साल के 80 years old के श्री प्रेमानंदा मंगापति जो नंदो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को सुबह 9 बजे उनके मकान नंबर 9 मोसेलमा माउंट पॉम्पलमुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन संडे एट 9 AM। रॉयल रोड खेफगया में 66 years old की श्रीमती मेधा धनु पैदाशी नाम बर्टन और जो मेधा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और फॉर्मर एक्टिंग डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशंस थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति साम्राज सिंह धनु के मकान रॉयल रोड खेफगया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 years old के श्री धनीलाल पुराहू जो ज्ञान के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 PM। आले भैयों वाकवा में 85 साल की 85 years old की श्रीमती सुभावती पैसान पैदाशी नाम शिवनाथ और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे राशा पेलोदों डेलियन सन्स रॉ रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथोबोन में 87 years old की श्रीमती वार्ता कुमारी गुराना पैदाशी नाम वेंकिया और जो दीवा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके मकान नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैथोबोन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। कोंकारोल केन्या में 64 साल की 64 years old की श्रीमती मानती नायको पैदाशी नाम से प्रसाद और जो नंदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान कोंकारोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9:00 PM। मोंटोक्यो रोड रियांबेल में 60 साल की 60 years

0: told the key. श्रीमती सुभावती दुखराज, श्रीमती सुभावती दुखराज की मृत्यु हो गई है, उनके अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके पिता ज्ञानी दुखराज के मकान मोतक्यो रोड रियोंबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। Payanque Road, Mosselmont Saint-Antoine Goodlands में, Payanque Road, Mosselmont Saint-Antoine Goodlands में 77 साल की 77 years old की श्रीमती जगवंती राजकुमार, श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशी नाम जुदवा और जो इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के मकान पायोंकु रोड मोसेलमों सेंट अंतोन गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.
2: Chimchka Chati Swinati Hogi, hey, it's a warm welcome again on Radio Musty. This is our Friday Mashup. कुछ मस्ती कुछ धमाकेदार गाने और क्या चाहिए मदमस्त बनाने के लिए इस म्यूजिकल जर्नी को और जहां पर भी साथ जारी है आप सभी का वेलकम आई विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग यहां पर है आपके साथ आज हंसनी और हाँ आज रेडियो जो है बहुत ही मेहरबान है एक से बढ़कर एक चांस आपको दिए जा रहे हैं In the first hour, we had the tickets for Abhijit Da ka concert. Iske baad One Day RJ ka chance bhi aapko diye ja rahi hai. So do keep making your videos aur aap post kar lijiye before the deadline. Kya pata aapka jo sapna hai to become RJ, to be at radio, wo bilkul saakar ho jaye. Aur saath mein yahan par aur ek chance. Kya baat hai? Ek baar phir se concert mein jaane ka ye jo mauka hai, yahan par radio aapko de raha hai. So play with MBC aur jeetne ke chance. To win one ticket for the Golden 90s era. यहाँ पे गोल्डन 90s era 2 featuring अभिजीत भाटाचार्य जो आ रही हैं लाइव इन मॉरिशस अपने लाइव कंसर्ट देने के लिए जो रहेगा शनिवार 25 ऑफ जुलाई को और शुरू होगा 7:30 PM लाइव एट SVICCPI. So, एक ऐसे जहान में कदम बढ़ाइए जहाँ पर नॉस्टैल्जिया होने वाला है दैट विल बी ग्रेट यादगार आवाज दैट विल डिफाइन बॉलीवुड का गोल्डन ईरा एंजॉय एन इवनिंग जहाँ पर टाइमलेस मेलोडीज होने वाले हैं कुछ लेजेंडरी हिट्स सुपर हिट गानों के साथ एंड विद प्योर म्यूजिकल मैजिक और जो टिकट्स है स्टार्ट एट ₹850 एंड अवेलेबल एट boticket.mu एंड रेजो ओटायो डोंट मिस दिस चांस ये जो यादगार कंसर्ट होने वाला है डोंट miss it and for reservations you can call on the hotline 466-9999 details to aapne pata laga liya hoga yahan pe humne aapko bata diya hai really hope you catch the headlights aur yahan par hai jeetne ke chance so aur ek gana humne pasand kiya hai I'm sure you're gonna love it aur usme rahega bilkul Abhijit Da ki great awaaz aur unke saath इस बारी टू फीमेल वॉइस होने वाली है राइट अभिजीत दा के साथ उस गाने में विल बी हैविंग टू फीमेल वॉइसेस दो आवाजें आने वाली है तो आपको पता लगाना है द टू फीमेल सिंगर्स उनके नाम आपको हमें बताना पड़ेगा राइट यही तो है आपका सवाल जो रहेगा गाने को सुनकर और सही जवाबों के लिए हम इंतजार करेंगे ऑन 5491294 सो चलिए हंसनी और पूरी टीम आए हुए है जी टू विश यू ऑल द बेस्ट
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty.

0: Friday mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: That was a great of the 90s era. और मूवी का नाम आपको बता देती हूँ, आसान कर देती हूँ, इट्स जुदाई, जहाँ पर नजर आए थे अनिल कपूर, श्रीदेवी एंड द ब्यूटिफुल उर्मिला. तो यहाँ पर सवाल तो हमारा ये था कि अभिजीत दा के साथ जो दो आवाजें गा रही थी, बस उनका नाम आपको हमें बताना था, आपको पहचानना था, राइट. और यहाँ पर कई सही जवाब मिले हैं, सो इसके लिए दिल से धन्यवाद आपको हमारे इस जकोंको में शामिल होने के लिए. दैट्स ग्रेट, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला है ना, इसके लिए हम तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच. सो आई गिव यू द राइट आंसर. द फर्स्ट वन इज अलका याग्निक और दूसरी आवाज आई थी सपना मुखर्जी की. अभिजीत दा के साथ वो दोनों गा रही थी. और ऐसे खूबसूरत 90s अगर आप सुनना चाहेंगे, सो डोंट मिस द कंसर्ट जो अभिजीत दा यहाँ पर देने वाले हैं लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 25th of July. और शुरू होगा बी कंसर्ट आज फ्रॉम 7:30 PM राइट एट SBICC Pi. तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं किसने सही जवाब दिया है और लकी ड्रो ने किसको पसंद किया है, किसने यहाँ पर बस अपना जो है लकी चार्म चलाया है और लकी ड्रो ने बस कबूल कर लिया. तो यहाँ पर लेट्स गो एंड चेक आउट.

0: यहाँ पे म्यूजिक से ही बस इट्स लाइक मस्त यहाँ पे मूड एकदम जबरदस्त हो गया है क्योंकि यहाँ पर अनाउंस करने का टाइम है कि किसकी जीत हो गई है. सही जवाब आई टेल यू अगेन अलका याग्निक एंड सपना मुखर्जी और जो विनर है उनका नाम है अभिषेक अभिषेक प्रसन्न और आप तो रहते हो वाले दे प्रेट पोर्ट लुइस. अभिषेक जी आपकी जीत हो गई है ब्रावो कंग्रेचुलेशन टू यू और बिल्कुल आप जा रहे हो कंसर्ट टू बी पार्ट ऑफ द 90s कंसर्ट जो अभिजीत दा हम सब 90s चाहने वालों के लिए देने वाली है. तो उनका कौन सा गाना आपको पसंद है सोच लीजिए यहाँ पे दिल को थामे रखे क्योंकि वो सब गाने वाले हैं हम सब 90s के चाहने वालों के लिए राइट. तो अभिषेक इससे पहले आपको आना है MBC राइट डोंट फॉरगेट योर आईडी कार्ड के साथ आपको आना है एंड ऑफ कोर्स आपको बस MBC आकर यू कैन कम टू कलेक्ट योर टिकट विद योर आईडी कार्ड. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती.
1: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक इट्स अबाउट द फीलिंग.
2: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday mashup.
1: RM2 Radio Musti.
2: All right, back with the show, back with the energy for Friday Mashup. और यहाँ पे to continue actually the musical journey आ गई है हमारी प्यारी से दिव्या. Hi Divya, welcome. Wish you a great evening.
3: Hello Hansu, thank you for the warm welcome and आपको भी wish कर रहे हैं lovely lovely evening and मैं काम पे आ रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स अमेजिंग
2: डांस करती हुई आ गई.
3: हाँ लेकिन मैं बैठी हुई थी

0: बैठी हुई थी लेकिन इमेजिनेशन में तो डांस फ्लोर में पहुंच गई थी.
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये जो हैप्पी मूड है आप लेकर आई हो टू रेडियो मस्ती एंड जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है अप टिल 9 PM.
0: अप टिल 9 PM और आज मूड और मोड थोड़ा अलग है.
1: अलग है इन गुड सेंस ना.
0: यस बिल्कुल.
1: ऑलराइट, सो थोड़ी देर के बाद हम दिव्या से मिलने वाले हैं. एंड यू नो दिव्या, यहाँ पे शादी होने वाली है कल. दिविशा रामफल की शादी होने वाली है अक्षय के साथ, जो पॉपुलर मिसेस के रहने वाले हैं. एंड वी हैव गॉट ढेर सारे गुड विशेस कमिंग फ्रॉम दिविशा के कजिन्स. वी हैव रिद्धि एंड हंशिका जो प्रंदे गौश से है. और कोई भी शादी वाला गाना चलेगा. और ये जो डेडिकेशन है इट्स कमिंग फ्रॉम आवर रेडियो सहयोगी निर्मला. या यू नो निर्मला ना, वो आती रहती है, कभी मुलाकात नहीं होती है हफ्ते में, लेकिन स्टिल ऑलवेज अ ग्रेट कंसिडरेशन फॉर आवर कलीग्स जो बस यहाँ पर होते हैं. सो निर्मला जी, थैंक यू सो मच यहाँ पर फॉर योर मैसेज एंड डेडिकेशन. अगला जो शादी वाला गाना है वो डेफिनेटली आपके लिए, दिविशा के लिए, अक्षय के लिए. टू विश देम हैप्पी वेडिंग.
2: इट्स नॉट जस्ट अबाउट द म्यूजिक, इट्स अबाउट द फीलिंग.
3: Friday Mashup. Friday Mashup.
2: RM2. Radio Musty. In the mix.

चले यहाँ पर बैंड बाजा बारात को लेकर मैं और दिव्या बिल्कुल शामिल हो गई है इन द टीम. जाने का टाइम आ गया है. थैंक यू सो मच यहाँ पर टू बी विद अस फॉर आज का फ्राइडे मैशअप. अभी रेस्ट ऑफ द शो विल बी विद दिव्या. स्टे वेल कनेक्टेड. मिलेंगे कल, मिलेंगे जल्द. सो स्टे सेफ एंड हैव अ वंडरफुल टाइम.

फिल्मी जाम रेडियो मस्ती। चलिए भाई, हंसने के बाद बंधी कमरी ऐसी सारी की आई अब दिव्या की बारी। आपको क्या लगा मैं आंटी बोलने वाली थी? बिल्कुल नहीं। चलिए हेलो हेलो, 7:04 हो चुके हैं। हमने प्रॉमिस किया था आज मुलाकात होगी।

0: और एक अलग ही मूड के साथ, क्योंकि आज फ्राइडे है और सब लोगों को पता है कि फ्राइडे इवनिंग को हम एक बहुत ही धमाकेदार मूड के साथ आते हैं टू गेट यू इन द फ्राइडे इवनिंग वाइब्स. और वैसे ये गाने सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि आप भी सेट हैं वीकेंड को वेलकम करने के लिए. चलिए यहाँ पर हंसनी के शो में हमने थोड़ी सी बात की, तो अभी के लिए इट्स पे बैक टाइम. हेलो हंसू, हाउ आर यू?
1: टाइम, यस. हाय दिवी, यहाँ पे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. वैसे घर जाने का मन ही नहीं है. You know,
0: I can totally relate.
1: You brought us so much of fun, so much of positive vibes.
0: और very rarely हमारी मुलाकात होती है, लेकिन जब मुलाकात होती है तो
1: non-stop
0: बातें. Non-stop घचर घचर घचर घचर.
1: Like it's a catch-up time.
0: Yes, yes. और इसको quality time कहते हैं.
1: एकदम.
0: तो चलिए हंसु, आज Friday है और आज क्या plan है?
1: आज घर जाके बस थोड़ा सा chill out and थोड़ा सा you know dance भी कर लेते हैं.
0: I just love your plan. क्योंकि हमेशा
1: आप ऐसे एनर्जेटिक म्यूजिक चलाएंगे ना, तो डांस हम तो करेंगे ही.
0: और अक्सर हम कहते हैं कि फ्राइडे इवनिंग को बहुत सारे लोगों के अनएक्सपेक्टेड प्लान्स भी बन जाते हैं. कुछ लोग प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं, एंड में पोस्टपोन कर लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट प्लान है घर पे चिल करना, विंटर सीजन चल रहा है, खाना खा के सो जाना,
1: गरम गरम खाना, फैमिली के साथ एक अच्छा सा मूवी देखना, और क्या चाहिए तुम्हें? गेट लाइक अ मस्ट.
0: ये लास्ट कैटेगरी में फॉल करती हूँ मैं, एंड आई गेस इट्स यू एज वेल. तो चलिए के लिए जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ, शायद आपके मूवी के प्लान्स बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं. यू ऑन योर वे टू वॉच अ मूवी या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, कि कोई आपके यहाँ इनवाइटेड है या फिर आपने अपने यहाँ किसी को इनवाइट किया हुआ है, जो भी है, बैकग्राउंड में बस हमारी आवाज़ और हमारे गाने ही चलने चाहिए. क्या है ना कि हम आपके खुशी में हम भी शामिल होना चाहते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्राइडे इवनिंग. तो चलिए आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे ऑन 5499 1294.
2: फिल्मी जान, RM2 रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

Alright, it's a beautiful one. Show me your thumka and of course thumke shumke तो आपको लगाना ही है क्योंकि आज Friday evening है और आपके पास एक बहाना भी है और साथ में एक reason भी. Well, 7:12 to all those having their dinner right now. आपको बना पे चीज शुभ आहार. वैसे dinner से मुझे याद आया अभी हमारे दो छोटे से शहजादे अपना डिनर ले रहे हैं युवंश एंड युवराज के लिए ये गाना खास तौर से आप दोनों के नाम एंड स्पेशली गोज आउट टू जीजू महेन एज वेल जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड चलिए आप लोग गुड बॉयज कीजिए कंप्लीट योर मील एंड खाना खाते खाते इस गाने को भी एंजॉय कीजिए. सो युवराज एंड युवंश दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू.

0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: भाई देखिए, उम्र जो भी हो, देयर इज ऑलवेज ऑलवेज अ रीजन टू स्टे हैप्पी और देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू डांस। और आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी आंटी जीज, जितने भी सारी हमारी आंटी जी हैं, आप लोग भी डांस कीजिए। चलिए ऐसे मत करिए, अगर आप लोग मना करेंगे तो कैसे चलेगा। There has to be some happiness and there need to be some happiness in life. और किसी को लगता है कि ये थोड़ा बहुत डांस करने से अगर खुशी मिलती है तो of course, why not? And every time you need to keep dancing as if nobody is watching. जिंदगी का यही गोल होना चाहिए, यही मोटो होना चाहिए।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: हाय, मजा आया ना? हाँ, मुझे पता था, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गेट अप एंड डांस, क्योंकि हमेशा जब आप अपने धुन में रहते हैं और यू डांस टू योर ओन ट्यून, तो इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। सो ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग टू बी हैप्पी, एंड अगर आपको एक वजह चाहिए ना, जस्ट नो दैट यू आर द रीज़न, और ये रीज़न काफ़ी है। वेल, 7:27, चलिए आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं। हाय दिव्या जी, इट्स फीदू फ्रॉम फ्रांस। हे फीदू जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस, और आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ। एक्चुअली वी आर सफरिंग फ्रॉम हीट वेव, और आप कहती हैं कि मुझे आपके विंटर से जलन हो रही है। कोई बात नहीं, आप भी विंटर का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। बस प्लेन से आपको आना है और मॉरिशस आकर सीधा लैंड होना है, और आपको भी मौका मिल सकता है। चलिए, मुझे पता है कि कभी कभी आप लोग चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, शायद अभी आपका प्लान नहीं बना है। कोई बात नहीं फिदू जी, आपके बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं। जब वो कुहार इन दिस हीट वेव, और चलिए एक ब्यूटीफुल सा गाना आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे, एंड यू वुड लाइक टू हियर द सॉन्ग माही वे फ्रॉम कल हो ना हो। अभी के लिए तो रिक्वेस्ट का गाना नहीं चल रहा है, बट फॉर श्योर अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू फिदू जी। हैव अ नाइस इवनिंग एंड वीकेंड एज वेल, थैंक यू सो मच, एंड हमारी टीम को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। सो साथ में यहाँ पर मीला जी आप हैं, सिजियम मील फॉर एस साइड से। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर योर सिस्टर इन लॉ मामी मीमी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम डॉटर, लेकिन अनला के लिए यहाँ पर आपका मैसेज थोड़ा इनकम्प्लीट आया है। अगर हो सके ड्रॉप इन योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप, नंबर वही है 5499-1294।
0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।

0: Welcome to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Well, you know, every time on the waves of Radio Masti, whenever we have Kanika Kapoor and Mead Brothers, तो हमेशा मैजिक सा ही क्रिएट होता है. 7:40 दिव्या का साथ इन योर फिल्मी जाम अभी से लेकर रात्रि के 9 तक. आई जस्ट होप दैट यू आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस फ्राइडे इवनिंग, जहां पर आपको मौका मिल रहा है कुछ वाइब करने के लिए गानों के साथ. साथ में अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ म्यूजिकल ड्राइव विद आरएम2.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, पार्टी अभी शुरू हुई है एंड इट विल कीप ऑन गोइंग टिल 9 PM। तो चलिए, यहाँ पर जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं, चाहे मॉरिशस में हैं या फिर सात समंदर पार, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आज क्या प्लान्स हैं हम ज़रूर जानना चाहते हैं। व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग। और मिला मागुआ का मैसेज आया है और कहती हैं कि द नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर माय सिस्टर इन लॉ मामी मीमी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम बेटी पूनम, ग्रैंडसन है यूप, सभी मागू फैमिली, शुभदयाल फैमिली, ऑफिस जमील और टू ऑल द स्टाफ वर्किंग एट सुपरमार्केट। वी हैव अनुषा, पूनम, अनिल, मालदिनी एंड बॉस ऋषि के लिए भी थैंक यू सो मच। आपका मैसेज इनकम्प्लीट आया था और जब भी आपके मैसेजेस इनकम्प्लीट आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप व्हाट्सअप के जरिए ही हमें याद करें ऑन 5499-1294। ऑलरेडी 7:56, कुछ ही देर में हम कदम रखने वाले हैं इन द सेकेंड आवर ऑफ योर फिल्मी जाम। सो स्टे वाइड कनेक्टेड।

0: फिल्मी जैम OMG रेडियो मस्ती। वेल 8:05 हो चुके हैं, बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ काम, सो इस शो को फिर से कंटिन्यू करते हैं लेकर ऊपर वाले का नाम। ऑलरेडी आपने ये गाना जरूर एंजॉय कर ही दिया है, द ब्यूटीफुल वॉइसेस ऑफ नीरज श्रीधर, मोनाली ठाकुर। तो चलिए कुछ और ऐसे भी गीत हैं जो हम आपको सुनाते रहेंगे टिल 9 PM, जिस पे आप वाइब भी करेंगे और थोड़ा बहुत आप मजबूर हो जाएंगे कुछ पैर को थिरकाने के लिए और कमर को भी। चलिए, इट्स वेरी वेरी नाइस टू नो कि आप लोग हर एक गीत को इतने पसंद कर रहे हैं और इतने एंजॉय कर रहे हैं। वी जस्ट वॉन्ट यू कि आप रिलैक्स करें, और रिलैक्स करने का मतलब ये भी है कि आप बस गीतों को सुनने के बाद अपने आप को इमेजिन करें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सच में रिलैक्स कर रहे हैं या फिर आप डांस कर रहे हैं। वैसे कहते हैं ना कि म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी, तो डांस भी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है विच इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग टू द माइंड। तो अगर आप लोग अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहते हैं और बस वीकेंड में 2 दिन ही बचे हुए हैं और इन 2 दिनों में अगर आप खुद के एनर्जी को थोड़ा बूस्ट अप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट डांसिंग एंड व्हाई नॉट सिंगिंग अलोंग। और डांसिंग और सिंगिंग के साथ साथ आप यहां पर थोड़ा सिंग एंड स्वे करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
2: डोंट मिस इट।
0: फिल्मी जैम
3: OMG रेडियो मस्ती।

0: Tak Bollywood. Tak Bollywood.
1: Radio Masti.
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: All right, Friday evening, 10 July 2026 and चलिए ये महीना भी बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। टाइम इज़ फ्लाइंग, टाइम इज़ फ्लीटिंग, लेकिन हम पूरा अपना यहाँ पर बेस्ट करेंगे टू मेक थिंग्स वर्क, ताकि आपको भी मौका मिले टू स्लो डाउन और आपको भी मौका मिले टू मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज। 8:25 टू ऑल दोज जो इस वक्त ड्राइव करके अभी घर वापस जा रहे हैं, हैव अ सेफ सेफ ड्राइव विद RM2 एंड टू ऑल दोज जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, यू डेफिनेटली डिजर्व अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हग, लेकिन हम वर्चुअल हग ही भेज सकते हैं, तो आपके बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं एंड बोंको हार्ट टू ईच एंड एवरी वन वर्किंग राइट नाउ। शायद कल भी आप काम पर जाने वाले हैं, अभी जितने भी सारे लोग मेहनत से काम कर रही हैं, डोंट वरी, एक दिन जब आप पलट कर देखेंगे

0: तो आपको समझ में आ जाएगा कि why things didn't work at first and क्यों आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी and ये सब कुछ आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा. भाई देखिए, जिंदगी एक पजल है और you need to add the missing pieces और सब कुछ एक ही दफ़ा नहीं होता है, वो सब कुछ धीरे धीरे होता है और अपने टाइम और अपने पेस के हिसाब से होता है. तो चलिए, डू नॉट रश इन टू थिंग्स. कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चलता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये वक्त थम जाए, और जब अच्छा नहीं होता है तो आप कहते हैं कि बस ये वक्त धीरे धीरे से नहीं बल्कि जल्दी जल्दी ये चलना शुरू हो जाए. लेकिन कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज स्टे हैप्पी एंड कीप गोइंग विद द फ्लो. एंड हम यही चाहते हैं कि आप अपने सारे गमों को भुलाकर, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है सब कुछ भुलाकर आप हमारे साथ एंजॉय कीजिए. बिकॉज आप एंजॉय करेंगे तभी आप को मौका मिलेगा टू क्रिएट सम मोर ब्यूटीफुल मोमेंट्स. जिंदगी में आपको आपके गम हमेशा याद नहीं आने वाले हैं, लेकिन एक दिन जब आप बैठेंगे ना तो ये जो खूबसूरत पल आपको बिताने को मिल रहा है ये ज़रूर इसके बारे में आप सोचेंगे, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ी आंखें नम भी होगी. एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट कि हमेशा आप गुड मोमेंट्स और गुड मेमोरीज़ को ही याद रखें. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. डोंट फॉरगेट इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 9 PM. कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस. यस यस, आपके मैसेजेस को अभी तक वेलकम कर ही रहे हैं ऑन 5499 1294 इज द नंबर.
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: देखिए गाने के अंदर अनारकली ने खुद कहा कि भाई चली रे चली अनारकली डिस्को चली, लेकिन अनारकली आकर चली भी गई, बट दिव्या का साथ है टिल 9 PM। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आप लोग 7 बजे से हमारा साथ देते आ रहे हैं और कुछ कुछ हमारी और आपकी आपस में बातें हो रही हैं, जब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस बार बार इनको वेलकम करने के लिए। चलिए एक बार फिर से आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हाई गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माई वाइफ श्वेता हुकुम फ्रॉम हबी रोशन एंड फॉर योर टीम एंड ऑल दोज जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं। तो चलिए रोशन जी अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर योर स्वीट वाइफ एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें याद करने के लिए। हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दिव्या, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड टीना जी उम्मीद करते हैं कि यू आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। एंड इस वक्त आप डिनर ले रही हैं फैमिली के साथ, क्या बात है, अभी डिनर लेना, थोड़ा लेट डिनर ले रही है, कोई बात नहीं, आज तो चीट डे है क्योंकि आज फ्राइडे है, आज तो सब कुछ जायज है और सब कुछ माफ है। तो चलिए नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू टीना जी एंड फॉर योर लव्ड वंस एंड आपको भी गॉड ब्लेस यू टू एंड होप टू सी यू सून। एज यूजुअल वी हैव ऋषि विदेशी, वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर RM2 लिसनर्स, आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के लिए। ओहो क्या बात है, लेकिन उनको बार बार मूडी कहना अच्छी बात नहीं है। आई गेस इतनी भी मूडी नहीं है वो, और आई गेस वो कभी मुस्कुराती होगी, कभी आपसे प्यार से बात भी करती होगी, तो उनको मूडी कहना बार बार बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना गुजाओ टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस। अब्रोड से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और चलिए आप लोग साथ देते रहिएगा क्योंकि हमारा और आपका साथ है टिल 9 PM।
0: फिल्मी जान
1: OMG रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: चलिए अभी के लिए तो मेरा क्लेवर माइंड ये कह रहा है कि हमारे और आपके दरमियान बस 10 मिनट ही बचे हैं, 8:50। चलिए यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, हाय आई एम हेमा बिसू फ्रॉम काचूबोन, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय मॉम शमिला, पापा है मनोज, बेटी है निष्ठा, नवीश, बहन डिंपल एंड

0: आई गेस यहाँ पर आपने कुछ और डेडिकेशन लिखा होगा एंड आपका मैसेज यहाँ पर कंटिन्यू होता है. बट नोबल मैसेजेस के जरिए जब भी कुछ आपके मैसेजेस आते हैं तो ये इनकम्प्लीट आ जाता है, इसीलिए हमेशा हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं टू कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेज. व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसी नंबर पर हमें याद कर सकते हैं, विच इज़ 5499-1294. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड बस टाइम निकल जाएगा इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, लेकिन आपको मौका मिलेगा अपने इस वीकेंड को और अगले वीक को रिफ्रेश करने के लिए. तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ, विल कीप यू वेल एंटरटेन्ड.
1: फिल्मी जान
2: RM2 रेडियो मस्ती.

वेल वेल 8:55 हो चुके हैं और चलिए इसी गीत के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. 7 बजे से आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया एंड हमें मौका मिला कुछ आपके मैसेजेस को भी पढ़ने के लिए. सो थैंक यू टू ऑल दोज जिन्होंने वक्त निकाल कर हमें याद किया. आई नो फ्राइडे इवनिंग हमेशा हर किसी के लिए बहुत ही बिजी वाला होता है क्योंकि ऐसे में बहुत सारे आपके प्लान्स बनते हैं, आप लोग घूमने जाते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, आपको बस यही टाइम मिलता है टू स्पेंड इट ब्यूटिफुली विद योर नियर एंड डियर वंस. और ऐसे में आपने हमें याद किया, वी फेल्ट एक्स्ट्रा स्पेशल. थैंक यू सो मच. जल्द ही मुलाकात होती है यानी कि कल हम और आप मिलेंगे शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लास्ट. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदिता और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती। फ्राइडे नाइट फाइनली आ ही गई है, मतलब स्ट्रेस को बाय बाय और वीकेंड को एक ग्रैंड वेलकम करने का समय हो गया है। अगले दो घंटे में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के सबसे पेपी, एनर्जेटिक एंड फील गुड ट्रैक्स, जो आपकी नाइट को और भी हैपनिंग बना देंगे। सो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मूड को ऑन कर लीजिए और शुरू करते हैं आपका अपना लेट नाइट ग्रूव, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

फ्राइडे नाइट का असली मजा तब आता है जब म्यूजिक हो फुल ऑन और एनर्जी हो नॉन स्टॉप। चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं या बस अपनी बालकनी में कॉफी एंजॉय कर रहे हैं।

अरे वाह क्या बात है, बॉलीवुड का मैजिक ही कुछ खास होता है। एक गाना और पूरा मूड फ्रेश। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम बढ़ते हैं अगले हमारे प्यारे से गाने की ओर। आप लोग हमारे साथ

दोस्तों वीकेंड का काउंटडाउन खत्म, अब सिर्फ फन का टाइम है। फ्राइडे नाइट सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं, एक फीलिंग है, फीलिंग दोस्तों। तो जितना हो सके डांस कीजिए, स्माइल कीजिए और हर एक बीट पे एंजॉय कीजिए।

मैं हूँ विनीता और आज की रात आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस समय ड्राइव करके अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप हमेशा की तरह हमारे साथ ग्रूव करते रहो, दिल से एंजॉय करो, क्योंकि रेडियो मस्ती पे मस्ती नहीं होगी तो और कहाँ होगी।

क्लॉक चाहे जो भी कह रही हो, एनर्जी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए। फ्राइडे नाइट है बॉस, और हम लेकर आए हैं वो बॉलीवुड बीट जो आपकी नींद को यूं उड़ा देगी। तो क्या करें, आगे बढ़े।

हाँ जी, तो रेडियो मस्ती पर साथ दे रहे हैं आप, और अगर आप इस वक्त स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं तो ये गाना स्पेशली आपके लिए। ड्राइव सेफ, स्माइल वाइड, और रेडियो मस्ती को अपना ट्रैवल पार्टनर बनाते रहिए। मैं हूँ वेदिता, अगला गाना पेश है आप सबों के।

यार लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, म्यूजिक हमेशा एक छोटी सी हॉलीडे दे ही देता है। बस आंखें बंद कीजिए, बीट फील कीजिए और इस फ्राइडे नाइट को यादगार बना दीजिए।

भाई वीकेंड ऑफिशियली ऑन है। अगर आपकी प्लेलिस्ट में बॉलीवुड के पैपी सॉन्ग्स नहीं है तो हम उसी कमी को पूरा करने के लिए आए हैं। ये क्या सोने का टाइम है? अरे मस्ती करने का टाइम है, तो चलो डांस फ्लोर हो या ड्राइंग रूम, बस ग्रूव करते हैं हमारे गीतों के साथ। राइट हियर ऑन रेडियो।

तो मैं हूँ वेदिता और हर फ्राइडे एक नई शुरुआत लेकर आता है। पिछले हफ्ते की टेंशन हो या कुछ भी गड़बड़ हो, छोड़ दो, जाने दो। नए वीकेंड को एक स्माइल के साथ वेलकम करो। म्यूजिक से बेटर थेरेपी शायद कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में हमारा आप साथ है, वेदिता का साथ देते रहिए और टेंशन को ठिचुम ठिचुम करके ढुसुम ढुसुम भी कर दीजिए और धुर बता दीजिए।

0: You're listening to RM2, a radio must-see.
1: अबे ढक्कन रुक, क्या पका रेला, उन्नी बजा रेला, थोड़ा सिंगिंग विंगिंग भी होवे बाबा।

की फ्राइडे नाइट का इतना ही म्यूजिकल सफर था हमारा, इसको हमने पूरी कोशिश की मेमोरेबल बनाने की, आपने भी साथ दिया, सो थैंक यू सो मच। मैं वेदिता और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स आपके अपने रेडियो मस्ती पर। खुश रहिए, सेफ रहिए, म्यूजिक से प्यार करते रहिए और हर वीकेंड को सेलिब्रेट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम टू से बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं अगले हफ्ते, नहीं कल, भूलना नहीं, मैं फिर आ

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: आपने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में? वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते